कम्युनिटी की आवाज, कम्युनिटी की पहचान, कम्युनिटी तक पहुंचाए अमन और सलामती का पैगाम। ये है इंस्पायर एफएम।

शायरी और जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।

0: याद करो जब उनके भाई हूद ने उनसे कहा था, क्या तुम डरते नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। हूद ने उनसे कहा था,
1: हजरत हूद अलैहिस्सलाम की इस तकरीर को समझने के लिए जरूरी है कि इस कौम के मुतालिक वो मालूमात हमारी निगाह में रहें जो कुरान मजीद ने मुख्तलिफ मकामात पर हमें बहम पहुँचाई हैं। उनमें बताया गया है कि कौम नूह की तबाही के बाद दुनिया में जिस कौम को उरूज अता किया गया वो यही थी। चुनाचे इरशाद होता है, वज़कुरू इज़ जअलकुम खुलफा मिन बाद कौम नूह, सूरह आराफ आयत 69। यानी याद करो अल्लाह के उस फजल व इनाम को कि नूह की कौम के बाद उसने तुमको खलीफा बनाया। जिस्मानी हैसियत से ये बड़े तनुमंद और जोरावर लोग थे। वज़ादकुम फिल खल्क़ बस्तता, अल आराफ आयत 69। यानी और तुम्हें जिस्मानी साख्त में खूब तनुमंद किया। अपने दौर में ये बेनजीर कौम थी, कोई दूसरी कौम इसकी टक्कर की न थी। अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, सूरह फजर आयत 8। यानी जिसके मानिंद मुल्कों में कोई कौम पैदा नहीं की गई। उसका तमद्दुन बड़ा शानदार था और ऊंचे ऊंचे सुतूनों की बुलंद बाला इमारतें बनाना उसकी वो खसूसियत थी जिसके लिए वो उस वक्त की दुनिया में मशहूर थी। अलम तर कैफ फअल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद, सूरह फजर आयात 6 और 7। यानी तूने देखा नहीं कि तेरे रब ने क्या किया सुतूनों वाले आद इरम के साथ। इस मादी तरक्की और जिस्मानी जोरावरी ने उनको सख्त मुतकब्बिर बना दिया था और उन्हें अपनी ताकत का बड़ा घमंड था। चुनाचे इरशाद होता है, फअम्मा आदुन फस्तकबरू फिल अर्ज़ बिग़ैरिल हक वकालू मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, सूरह हामीम सज्दा आयत 15। यानी रहे आद तो उन्होंने जमीन में हक की राह से हटकर तकब्बुर की रविश अख्तियार की और कहने लगे कि कौन है हमसे ज्यादा जोरावर। उनका सियासी निजाम चंद बड़े बड़े जब्बारों के हाथ में था जिनके आगे कोई दम न मार सकता था। वत्तबाऊ अम्र कुल्ली जब्बारिन अनीद, सूरह हूद आयत 59। यानी और उन्होंने हर जब्बार दुश्मन हक के हुक्म की पैरवी की। मजहबी हैसियत से ये अल्लाह ताला की हस्ती के मुनकर न थे बल्कि शिर्क में मुब्तला थे। उनको इस बात से इनकार था कि बंदगी सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، سورہ الاعراف آیت 70۔ انہوں نے حود علیہ السلام سے کہا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی بندگی کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ ان خصوصیات کو نظر میں رکھنے سے حضرت حود علیہ السلام کی یہ تقریر دعوت اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے۔

0: زباں اب تک تیری لہروں کے دوش پہ آواز کی اس خوبصورت رشے سے منسلک ہم اور آپ رہتے ہیں چومس کا نام ہے بول کھلا آزاد ہے تیرے جناب والا. آپ تمام لوگ سن رہے ہیں ریڈیو آزاد وے یور وائس میرز. آپ کا پیارا راج دلارا بانکا سجیلا ریڈیو آزاد. آج 14th سالگرہ ہے ریڈیو آزاد کی اور بہت سارے مزیدار صبح سے لے کے اب تک ہم کئی ہمارے کام تھے جو ہم نہیں کر پائے کیونکہ آج ایک اسپیشل سیلیبریشن چل رہی ہے ریڈیو آزاد کے سوشل میڈیا پہ بھی, ہمارے براڈ کاسٹ پہ بھی, اور جتنے لوگوں کو ہم نے آسانیاں فار دیئر ایئرز اینڈ آسانیاں فار دیئر آئیز پیدا کی ہیں ان کے رسپانس آل اوور دا ورلڈ, نیپال سے لے کے کینیڈا, یو ایس اور ہر انگلینڈ, ہر جگہ سے مبارکبادیں ہم وصول کر رہے ہیں صبح سے. اور جب یہ ایسی کوئی چیز ہو تو پھر باقی ساری چیزیں پینڈنگ میں چلی جاتی ہیں. اور امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ دن آپ لوگوں کے لیے بھی اتنا ہی خوبصورت, موسم بڑا اچھا ہے, اندر کا موسم بھی اچھا ہے, 14 کی محنت کے رنگ لانے کا بھی اور بہت ساری نئی چیزیں سیکھنے سکھانے کا بھی. ایک پلیٹ فارم ریڈیو آزاد جس پیار محبتوں دعاؤں, جتنی عزتیں پیار محبتیں اور دعائیں ہمیں ملی ہیں اس کے اگر ہم ڈالرز بنا دیں تو میرا خیال ہے ہم بلینئر ہو جاتے ہیں لیکن سوشل بزنس ہونے کی وجہ سے اس کے علاوہ سارے کام ہو گئے. تو چلیے آج کا یہ شو شروع کرتے ہیں جی. 9725019390 واٹس ایپ نمبر میں تھوڑا سا پرابلم چل رہا ہے, تو جو لوگ بھی واٹس ایپ پہ کال کر کے بات کرنا چاہتے ہیں وہ تمام لوگ مہربانی کر کے جن کے پاس میرا سیل فون نمبر ہے اس کے واٹس ایپ کے اوپر آپ لوگ کالز کر سکتے ہیں, تو میں وہاں سے بھی آپ کو آن ایئر لے سکتا ہوں آسانی پیدا کرنے کے لیے. اور ہماری فون لائنز تھوڑا سا آج کل بیہیو نہیں کر رہی, اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. دو لائنز بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو لیتے رہیں گے اور ساتھ ہی جو ہمارے واٹس ایپ کا نمبر ہے جن کے پاس بھی ہے وہ لوگ بھی ساتھ ساتھ آتے رہیں گے. آج کا پہلا لکی کالر دیکھتے ہیں جی کون ہے. سرپرائز ہے, ریڈیو آزاد یو آن دی ایئر.
1: کیسے
0: آپ جی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, بالکل ٹھیک ٹھاک,
1: بس کنگریچولیشن 14.
0: تھینک یو, سو گریٹفل, تھینک یو ویری مچ. اسی بہانے آپ کی آواز آن ایئر آ گئی لکی, اور ساتھ سگنیچر ہنسی بھی آ گئی.
1: پلانیٹری الائنمنٹ سب ٹھیک ہے آج, ایسا لگ رہا ہے.
0: یہ میرا خیال ہے پلانیٹری الائنمنٹ کا ایک واٹس ایپ براڈ کاسٹ ہوتا ہے. یہ آج کل ہم نے نیا کام شروع کیا ہے, میں لوگوں کی گڈ ول پہ رہنے کے بجائے میرا خیال ہے ان کو نا خبردار کرتے رہنا چاہیے ساتھ ساتھ, اس طرح مجھے بھی آسانی ہوتی ہے سسٹم بنا کے, لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے. بٹ سو
1: جو بھی ہو پلانٹ الائن ہو جائے, ویدر اٹس تھرو خبرداری یا
0: سمتھنگ ایلس, اٹ ورکس. یہی تو چل رہا ہے پچھلے 14 سے, ہوشیاری خبرداری,
1: بس اسی لیے تو 14 تک پہنچ گئے آپ.
0: ہاں جی, اور پتہ بھی نہیں چلا,
1: پتہ بھی نہیں چلا, سچ مچ ٹائم فلائز وین یو آر ہیونگ فن.
0: ہاں جی, اور اگر آپ کوئی چیز ایسی چلا رہے ہوتے ہیں بنا کر لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں تو لگ پتہ جاتا ہے, اور جب ویسے دیکھنے میں لگتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلا اور 14 گزر گئے.
1: That's a very good observation actually, because سچ مچ پتا نہیں چلا, اور مجھے ہی لگتا ہے کہ میں وہ 14 کی جرنی میں, میں 13 تو ہوں آپ کے ساتھ, تو وہ بھی کیسے گزر گئے یہ نہیں پتا چلا. سو ویری گریٹفل.
0: مجھے آج بھی وہ آپ کی پہلی والی میٹنگ, اور ایکچولی آج کل اسٹوڈیو کا ڈیسک جہاں پہ ہے اور جہاں سے یہ سب آپریٹ ہو رہا ہے وہ اس زمانے میں کانفرنس روم ہوا کرتا تھا, اٹس دا سیم ایگزیکٹ سیم ویری پلیس ویئر وی آر سٹنگ ویئر یو کیم ان فار دا فرسٹ ٹائم. اور اسی دن
1: اور آپ نے لیفٹ رائٹ کر دی تھی میری, آئی ریمبر ویری ویل.
0: نہیں, اس سے پہلے آپ اتنا کچھ دنیا میں کر رہی تھی, تو میں تھوڑا سا سسٹم کو ہلاتا ہوں بندے کی تاکہ جو مجھے جا کے جو مجھے چاہیے وہ مجھے مل سکے. سائلی جی, میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کا, راگو کا. آپ لوگوں نے بہت خوبصورت ریڈیو آزاد میں رنگ ایڈ کیے اپنی پریزنس سے, اپنی پروگرامنگ سے. جھوم برابر جھوم میں آپ نے برابر جھمائے رکھا ہمارے تمام لوگوں کو. بیچ میں آپ نے ماشاءاللہ ڈگریز بھی کیں, اب آپ اور زیادہ پروفیشنل کنسلٹنٹ بھی ہو گئیں لوگوں کے دماغ کی جو کھڑکیاں کھولنے اور روشن دانوں میں سے ہوا گزارنے کے لیے. تو اس سارے اور بیچ میں آپ کی زندگی میں بہت ساری چینجز آئیں جو میں نے ہوتے ہوئے دیکھے, چھوٹے چھوٹے بچے میں نے بڑے ہوتے دیکھے ماشاءاللہ. آج کل جب میں ان کو کبھی کبھی فیس بک پہ دیکھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے, یہ ہماری وہی قوم ہے جو بچے بڑے ہو گئے ہیں لیکن بڑے ابھی تک بڑے نہیں ہو سکے.
1: جی بالکل ٹھیک بات ہے.
0: اس جرنی میں یو ہیو گیون سو مچ ٹو اس اینڈ وی ہیو انجوائڈ یور کمپنی, آپ کی ہنسی, آپ کی باتیں اور آپ کی پریزنس, اور راگو جہاں جہاں بھی اس نے سپورٹ کیا ہمیں ہمیشہ یاد رہتا ہے. سو ویری گریٹفل فار آل دی ٹائم دیٹ یو ہیو اسپینڈ ود اس.
1: ویل آئی اپریشیٹ دیٹ یو گائز ہیو دس پلیٹ فارم فار اس, اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. اتنی یو نو جب ہم کہتے ہیں کوئی پلانٹ बढ़ता है, बट यू नीड दैट फर्टाइल सॉइल फॉर दैट प्लांट टू सक्सीड एंड रियली प्रोवाइड शेड फॉर अदर्स. सो आई रियली अप्रिशिएट कि आपने वो फर्टाइल सॉइल तैयार की है, एंड इट्स ऑलवेज बीन अ वंडरफुल जर्नी सो फार, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट 14.
0: So grateful. 2.5 साल जब पूरे होंगे जनाब, तो ये एक्चुअली जो मट्टी और ये सारा जो बेड बनाया गया सारा कुछ, क्योंकि हमने तो शुरू में चीज़ की एक दाग बेल रखी, फाउंड होगी एक चीज़ और उसके बाद यू नो एक्सीडेंटली हुआ और उसके बाद काम चल पड़ा. लेकिन उसके बाद इस मट्टी को मैं सिर्फ उसकी कभी कभी आके गोडी करता हूँ, ऊपर नीचे कर देता हूँ मट्टी को. बाकी सारे का सारा जो एक्चुअल जो क्रेडिट जाता है वो आयशा जी का है. और उसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारी टीम आती रही, वो रंग बिखेरती रही, और इन सबको साथ चलाने का और इस बहुत बड़ा सेहरा जो है वो कुछ 3-4 लोग हैं जिनको मैं आज क्रेडिट भी देना चाहूँगा, उनकी वजह से है. जो हम बन पाए वो भी उनकी वजह से, जो नहीं बन पाए वो भी उन्हीं की वजह से है. तो इसीलिए ये क्रेडिट उनको ही साथ साथ देना चाहिए. मैं भी इसमें आता जाता हूँ ताकि ये चीज़ों को मैं देखता रहूँ और हम किसी विजन के ऊपर चलते रहें. सो ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच. मेहरबा हमारे साथ रेडियो आज़ाद यू ऑन द एयर.
2: जी अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम सलाम.
2: हमने कहा टीन एज में शामिल हो गए, एंटर हो गए रेडियो आजाद वाले.
0: अब 14 से लेके 19 साल तक जो हमारा जो बंदे बच्चे का भी जो बिल्कुल सब बदल जाता है, तो इंशाल्लाह मेरा भी हमारा भी यही प्लान है कि 14 साल के बाद बच्चा बड़ा हो गया है तो अब ये बड़ों की तरह सोचेगा, बड़ों की तरह करेगा. इसके सिस्टम जो है इंशाल्लाह जो हमने सीख लिया है, समझ लिया है, अब इसके टेक ऑन करने का, दुनिया को टेक ऑन करने का टाइम आ गया.
2: बिल्कुल बिल्कुल. अब मैं कह रही हूँ कि आप शेक इसलिए करते हैं कि सितारे अलाइन हो जाए.
0: हाँ जी, वो मुझे हिलाना हिलूना पड़ता है ताकि थरथली मचानी होती है ना, वो यार नहीं आनियाँ जानी होती हैं महफिल में, तो पता चलता है कि महफिल जिंदा है.
2: बिल्कुल. मैंने कहा आप 14 साल की अभी सायली जी बात कर रही थी, हमने कहा जिंदगी गुजर गई, पता ही नहीं चला.
0: ये बिल्कुल ऐसे जो मैंने कहा था ना, खान जी एक दफ़ा मुझसे बात करते करते, वो शेव कर रहे थे तो बात करते करते हम चुप से हो गए शेव करते करते, और मैंने ऐसे पूछ लिया चेहरे का जब रंग बदला था, के गले हाँ जी यानी क्या बात. तो कहते हैं यार मुझे पता ही नहीं चला, आज मैंने शीशे में शेव करते हुए देखा, हालांकि कितनी दमदार शेव करता है, आज मुझे लगा कि मेरे चेहरे के ऊपर इतने सन गुजर गए, इतने साल गुजर गए कि, और बीच में मुझे एहसास भी नहीं हुआ, और आज मतलब 70-75 ये जब आज मुझे लगा है कि मैं बूढ़ा हुआ.
2: जहन जो है वो मानता नहीं है, देख के अब पता चलता है कि यस वक्त की मुसाफत हमने बहुत तय कर ली.
0: असल में रूह की कोई एज नहीं है, और रूह जिस टाइम एंड स्पेस से आया है उसको, उसके ऊपर कोई वक्त नहीं गुजरता है. वक्त जिस्म पे गुजर जाता है, वक्त जहन पे गुजर जाता है, और उसने इतना ऑक्यूपाई करके हमको रखा होता है. इसीलिए तो 18-20 साल के बंदों की तरह 60-70-80 साल के लोग बिहेव कर रहे होते हैं, और जो 17-18 साल में सजाएं मिल रही होती हैं वो हमें इस उम्र में भी मिल रही होती हैं, क्योंकि हम वो मेच्योरिटी उस तरह नहीं जिंदगी के साथ कर पाए. और यहाँ मेच्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि आप बोर हो जाएं, बोर बातें करें, बोर कलर्स पहने, लोगों को आप टेंशन दें, परेशान करें. इसमें यह है कि जिंदगी के जो एड अप हुए ईयर्स एक्सपीरियंस के तौर पे आए हैं, उनको आपने डील ऐसे किया है कि आपका हंसना, खेलना, मजाक करना, फ़न जो है, फ़न के टाइम पे फ़न करना और सीरियस वक्त के काम पे सीरियस करना, जो 3-4 पिलर्स हैं ज़िंदगी के, उनको अपने काबू में रखना कि बाकी चीज़ों में आप इन्जॉय कर सकें, लाइट हार्टेड रह सकें, फ़न क्रिएट कर सकें. जितने लोगों की ज़िंदगी में फ़न नहीं है इस वक्त, चाहे वो 50, 40, 60, 70 जितने के भी हैं, ये हमारा कसूर है. हमने चीज़ों को मैनेज नहीं किया. 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैनेज नहीं किया गया, हेल्थ को, रिलेशनशिप्स को, फाइनेंसिस को, या चौथी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी वो हमने बनाई नहीं, मकसद. उस मकसद के पीछे जब हम चलते हैं तो उसकी जो राह पे जब हम लगते हैं तो फिर आपको इस तरह अजीब किस्म की कमज़ोरी नहीं फील होती, मैं कहाँ हूँ, वर्थलेसनेस नहीं फील होती. जो आपको मिला होता है उसको कोई बताने की ज़रूरत नहीं होती किसी को आपको, कि आपको क्या मिला. फिर आदमी ये देखता है कि उसमें शुक्रगुजारी में मैंने क्या क्या किया, मैं इस सफ़र में कहाँ तक, मैंने कहाँ पहुँचा, मैंने क्या सीखा, मैंने क्या समझा, मेरे अंदर क्या प्रोडक्टिविटी, कंस्ट्रक्टिव चीज़ें आईं, और मैंने कैसे अपने डीमंस को कैसे डील किया, अपने कॉम्प्लेक्सेस को, इनसिक्योरिटी को, अपने मसाइल को डील कैसे किया, और अपने गिफ्ट के साथ मैं कहाँ तक पहुँचा. ये वो दिन होते हैं जिसमें आदमी इन तमाम चीज़ों के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है और अच्छा फील करता है, यूफोरिक रहता है.
2: आपकी बात पे दो चीज़ें और ऐड करूँगी.
0: जी जी.
2: एक तो कि लर्निंग और थिंकिंग वहाँ होती है जहाँ आपने कहा ना मिट्टी नरम हो, गोडी की हुई हो, ताकि जखीरे बढ़े और हवा और दूसरे जो भी है, जमीन के मॉलिक्यूल्स और भी इसको ताकत मिले, यानी दूसरे जितने भी हम आसपास से जो जमीन कैच करती है एलिमेंट्स को, तो गोडी करना बहुत जरूरी है जहन की भी और जमीन की भी, वरना फूल नहीं उगेगा। तो सोच का फूल उस पर खिलता है। दूसरा एक और भी चीज है कि लर्निंग वहां पे सबसे बेहतरीन होती है जहाँ लोग अच्छे होते हैं, जहाँ एनवायरमेंट अच्छा होता है, जहाँ पे आपको वैल्यू दी जाती है, रिस्पेक्ट दी जाती है और आपकी बात सुनी जाती है। तो वहां पे लोग कंफर्टेबली आके लर्न करना और अपनी राय, अपनी थिंकिंग पेश करते हैं। दूसरा मैंने जो फर्क देखा, पता नहीं 10 साल या 11 साल मुझे हो गए, आई डोंट इवन रिमेम्बर के कौन से साल ज्वाइन किया था, तो मैंने एक चीज मिस करती हूँ कि रेडियो जो है वो टीवी बन गया, जो क्योंकि मेरे जहन में एक, जब आप सिर्फ आवाज का जादू सुनते हैं तो आपके कान जो हैं वो हमतन गोश होके और उसको पूरी तरह अब्सॉर्ब करते हैं। अब हमें दो प्लेटफॉर्म है कि हमें वीडियो भी देखनी है, ऑडियो भी, उसमें हमारी अटेंशन बढ़ जाती है। तो पहले मजा मैं क्योंकि और ज्यादातर ऑडियो पर्सन हूँ, तो इसलिए मुझे वो चीज की कमी अब भी महसूस होती है जहाँ पे, क्योंकि अब प्लेटफॉर्म बदल गए, यू पीपल हैव टू डू दैट, ये मैं नहीं कह रही, लेकिन जो एक रेडियो की अपनी खासियत है उसमें कमी आ गई।
0: आप अगर मुझसे पूछेंगी ना, और मेरी प्रेफरेंस अभी भी ऑडियो है। ये जो ऑडिटरी सेंसेस इंसान को रब ने दिए ना, इसको जो इमेजिन करने की, इसके साथ जो पावर्स हैं, जैसे आप किताब पढ़ते हैं तो आप खुद इमेजिन करते हैं, उससे आपकी इमेजिनेशन बढ़ती है, उससे आपकी इंट्रीग में इजाफा होता है, उससे आपकी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होती है, उससे आप डायरेक्टर की तरह खुद चीज़ें क्रिएट करते हैं, उससे आप एक्टर की तरह खुद अपने ऊपर वो चीज़ें होते हुए महसूस करते हैं। लेकिन जब आप वीडियो देख लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो आपने करनी थी अब वो वीडियो आपके लिए कर देता है, और इतना सोचने समझने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी क्योंकि वक्त के साथ साथ भी बदलना है, रेडियो में हमने कोई चेंजेस नहीं किए, उसको प्रोग्रामिंग हमने वैसी रखनी है, सिर्फ कैमरास वगैरह के साथ हम कोशिश करते हैं, और कोई भी आपको पूरा जो शो है ना वो वीडियो पे भी हम नहीं देते, ताकि 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के जो क्लिप्स हैं, जैसे आयशा जी के शोज़ के होते हैं, फेसबुक लाइव होता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कि विजुअल मीडियम को भी आप केटर फॉर यू नो आप कर सकें, नए ज़माने के साथ भी चल सकें, और जिन लोगों को ये 2 मिनट 3 मिनट के अंदर कुछ लोगों तक बात पहुंचाई जा सकती है, क्योंकि वक्त लोगों के पास कम है, अटेंशन स्पैन वो पुराने ज़माने के रेडियो वाला है नहीं, तो वो हम पहले वो देते हैं, उसके बाद अगर किसी को ये चाहिए तो वो रेडियो ढूंढ लेता है, वो 2 घंटे का शो ढूंढ लेता है, वो मिक्स क्लाउड पे जाके अपने शोज़ ढूंढ लेता है। तो हर उस बंदे के लिए डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स है, ये बंदोबस्त करना भी हमारा काम है, तो वो भी साथ साथ हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोग कंफर्टेबल हो रहे हैं स्क्रीन के साथ, आहिस्ता आहिस्ता ना टाइम लगता है इन तमाम चीज़ों, जितना आप करेंगे उतना ये बेहतर होता चला जाएगा, और इसमें लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, स्पेशली वो जो क्लिप्स हैं। रेडियो आज़ाद पिछले 3 सालों में अगर अपनी जगह पकड़ पाया है, AM/FM ना होने की वजह से भी, डिजिटली भी, और लोगों तक जो पहुँच पाया है, उसमें बहुत बड़ा जो रोल है वो ये जो हम आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल की तरफ जा रहे हैं उसका भी बड़ा रोल। रेडियो आज़ाद ही रोंदिया। वालेकुम अस्सलाम, मुबारकबाद, बड़ी बात है, आज तो बड़ा दिन होगा जो आप तशरीफ लाएंगे ज़हरा जी।
3: आपकी इतनी बड़ी सेलिब्रेशन और हम ना करें कॉल, आपको पता है मैं जॉब पर हूँ और मैं क्लोजेट में घुसकर आपको कॉल कर रही हूँ।
0: देखिए, जिसने करनी होती है ना वो चाहे क्लोजेट में घुसे, चाहे बाथरूम में घुसे, चाहे गाड़ी में घुसे जाके, जैसे नमाज के लिए हम गाड़ी में घुस के वक्त निकाल लेते हैं, ऐसे लोग जिसने निकालना होता है वो निकाल लेता है वक्त। थैंक यू वेरी मच।
3: क्योंकि मेरी जो इनकी काफी शोर होता है, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, तो मुझे याद नहीं, तो मुझे कॉन्सेंट्रेट होकर बात करनी है। बहुत बहुत मुबारक हो आजाद जी आपको, बहुत रियली मुझे इतनी खुशी हो रही थी ये सुनकर कि 14 ईयर्स हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह, और आपने एक नन्हे से पौधे को एक फूल वाला जबरदस्त फल वाला दरख्त बना दिया है। मुझे पता है क्रेडिट सारे लोगों को जाता है, आपकी इंटायर टीम को जाता है, मगर मसला ये है कि हमारा आपके साथ इतना इंटरेक्शन हुआ है, और इतना मैं ये समझती हूँ कि मुझे मेरा सारा जितना भी मुझे मेरी ग्रोइंग में, मेरी मेंटल कंडीशनिंग में आपका जितना बड़ा रोल है ना आजाद जी, अब यकीन करें मैं बता नहीं सकती। मैं अभी भी जब भी मुझे कुछ होता है मैं सिर्फ आपकी जो नई ऑडियो सुनती हूँ, आपकी बातें सुनती हूँ, मुझे नई जिंदगी मिल जाती है।
0: So grateful,
3: आप यकीन करें आजाद जी, मैं आपको ऑनेस्टली, मैं आई एम नॉट, मतलब मैं कुछ एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, मुझे मेरी बेटी मुझे कहती है समटाइम, पूछती है कि मामा आप इस तरह की मेंटेलिटी कैसे, आपकी आप बहुत डिफरेंट है दूसरों से। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये ना आजाद जी के शो का है सारा क्रेडिट, ऑनेस्टली आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट लाइंग, मैं बिल्कुल ये हमेशा इसे कोट करती हूँ आपका बहुत बड़ा हाथ है. और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आजाद जी, मेरा जो विजन क्लियर अल्लाह के बारे में हुआ है ना, यकीन करें मैंने आपके शो सुने थे और हम जो अल्लाह को क्या बना दिया था, हम लोग हर वक्त अल्लाह ये करेगा अल्लाह, लेकिन आपने इतना खूबसूरत अल्लाह हमें पेश किया जिससे प्यार आने लगा. और मुझे आप यकीन करें लिटरली कहते ये है खुदा. और ये मैंने अपनी बेटी को बताया ना, क्योंकि यहाँ के बच्चे अगर आप उन्हें ये डरा डरा के कहते रहे जो होगा तो अल्लाह ये कर देगा अल्लाह, मैंने अपनी बेटी को ये सब बताया कि तो प्यार करने वाली चीज है, इससे डरना नहीं होता ये वो. तो अब यकीन करें मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं आप मेरे हमेशा आपको और सबसे बड़ी रेडियो आजाद जी है मेरे लिए एक बहुत बड़ी जो है ना गिफ्ट है मेरी जिंदगी में. एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने आप लोगों को फाइंड किया और मैंने आप लोगों को ज्वाइन किया था. एंड आई एम सो ऑनर्ड to be a part of your, you know, radio.
0: Likewise. Yeah. आपकी जो प्योर इंटेंशंस हैं, आपकी जो दुआएं हैं, आपकी जो सिंसेरिटी हैं, और एक लंबे अरसे तक जो रेडियो आज़ाद का और बोल के लब आज़ाद तेरे का जो आपने साथ दिया है शो को स्टार्ट करने का, वो उन तमाम चीज़ें जो भी आपको मिला है ना, आपने पूरा पूरा उसका हक अदा किया है और आपने रिटर्न भी किया है. एक्चुअली अगर हमें जो कुछ मिल रहा होता है ना, जिस दिन हमारा क्रेडिट और डेबिट सीधा होना शुरू हो गया और हम लोग अगर कुछ दे नहीं सकते, तो कम अज़ कम जहनी तौर पर रूहानी तौर पे अगर हम अपनी हाजिरी लगाते हैं, अपने अल्फाज से हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा समझते हैं, और फिर साथ साथ अपने तरीके से हम कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं, तो चीज़ें वो दो अच्छा हो जाती हैं, उनके रिजल्ट्स आपकी ज़ात पर. चीज़ की कदर करना अगर आपने नहीं, असल में हम जिस ज़माने और जिस इलाके से और जिस मट्टी से उठे हैं ना, हमें रब की कदर नहीं है, हमें अपने टैलेंट्स की कदर नहीं है, हमें अपने रिश्तों की कदर नहीं है, हमें जो मिला हुआ है हमें उसकी कदर नहीं है, और जो नहीं मिला हुआ उसके लिए हमें सब्र नहीं है, और जो नहीं मिल रहा उसके लिए हम काम करने के लिए अपने आप को इस काबिल नहीं समझते, और चीज़ों को अभी तक हमें सही सेंस में लेना ही नहीं आया. हर चीज़ हमें लगता है कि हम अंडर अटैक हैं, हमें लगता है कि हमारा सर्वाइवल स्टेज पर चला गया. हालाँकि अगर आप इससे बाहर निकलेंगे, इन डर जो हैं, इन डरों से आप बाहर निकलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितने ब्लेस्ड हैं आप, कितनी खूबसूरत ज़िंदगी है, कितना आपको मिला हुआ है और कितना आप वापस दे सकते हैं. जब ये तमाम चीज़ें समझ आएंगी ना, जब आपका पूरा फेवर बैंक के अंदर का जो कॉन्सेप्ट है, जो मिल रहा है वो आपने देना है, अपनी ज़ात से बाहर निकल कर जब आप देना शुरू करेंगे, तो जो कुछ भी आपको चाहिए वो खामखा आपको मिल जाएगा. और अगर इन चीज़ों को आप नहीं समझेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये चीज़ें आपसे ले ली जाएंगी और किसी और को दे दी जाएंगे जो इसको डिज़र्व करता है. इसीलिए हम तमाम लोग सिर्फ, हर वक्त मैं यही सोचता रहता हूँ और फिगर आउट करता रहता हूँ कि कहीं मेरे से कुछ ज़्यादती या जुल्म तो नहीं हो रहा अपनी ज़ात पर या उस काम पर या जो चीज़ें ब्लेसिंग्स मुझे मिली हैं. और जहाँ जहाँ गलती होती है आदमी रुजू कर लेता है चीज़ों को, ठीक करके फिर आगे बढ़ जाता है. तो यही असल काम है जो करने का था, और वही हम आपके अब हम कर ये सब कुछ आपके साथ ऑन एयर रहे हैं, आपके सामने रहे हैं, तो उससे और ज़्यादा फर्क पड़ जाता है.
3: बहुत आला जी, आप यकीन करें आप तो बस क्या है बस. और सबसे बड़ी बात पता है आपको, पता है कि जैसे अभी अभी आपकी जो कॉलर आई हुई थी और मुझे ये बात बोली थी, ऑडियो वाली बात हो रही थी, रियली मुझे भी ऑडियो पता है, मुझे इतना फैसिनेट करता है रेडियो सुनना. ये एक मुझे इतनी बड़ी हलचल वाली दुनिया के अंदर जब आप रेडियो सुनते हैं, एक अजीब सी फीलिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है,
0: क्योंकि वो आपका पर्सनल अच्छा लगता है. आपके कानों में जो आवाज आती है वो लगता है आपके लिए. हाँ. वो आपके घर के लोग लगते हैं. आप विजुलाइजेशन, आप अपनी बहुत सारी सेंसेस यूज करती हैं. ये तमाम चीजें जब आप यूज करती है ना, तो चीज आपकी अपनी हो जाती है. आपको आप उस चीज से रिलेट करते हैं, उस चीज़ को ओन करते हैं, और फिर उस चीज़ के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं. तो ये तमाम चीज़ें जिसकी वजह से आपको इतना अच्छा लगता है. नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच. साथ साथ और भी लोग हैं, लाइंस मेरे पास दो हैं, इसलिए मैं कोशिश करके साथ साथ बाकी लोगों को भी लेता चला जा रहा हूँ. रेडियो आजाद, यू ऑन द एयर.
4: हेलो, गुड इवनिंग सर.
0: गुड इवनिंग मैम.
4: सर, जस्ट कॉल्ड इन टू कांग्रेचुलेट यू एंड रेडियो आजाद टीम फॉर सेलिब्रेटिंग 14 years. पिछले 5 साल से आई हैव आल्सो बीन अ पार्ट ऑफ दिस टीम.
0: कैसा हमने आपके साथ क्या क्या क्या ज्यादतियां की हैं श्रद्धा जी, बताइए ना.
4: सर, मुझे बहुत अच्छा लगा है. आई हैव बीन अ पार्ट सिंस लास्ट 5 years. बहुत कुछ सीखने मिला है, हाउ टू बिल्ड अ टीम, टीम के साथ कैसे काम करना है, हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट वी आर डूइंग, और कैसे आगे बढ़ना है लाइफ में, बहुत कुछ सीखने मिला है.
0: ये मुझे बताइए, ये जो हम क्लिप्स वगैरह आप सुनते हैं शो में, जैसे आशीष जी के क्लिप्स होते हैं, हमारे क्लिप्स होते हैं, और ज़्यादा दो मेन लोग जो इन्वॉल्व हैं रेडियो के साथ, वो मैं और आशीष जी हैं, पिछले 5 सालों में क्या सही से आपने सच बताना है, ठीक है? भगवान को हाजिर नाजिर जान के बताना है आप, ठीक है? ओम की आवाज पहले अपने अंदर पैदा करें और उसके बाद मुझे ये बताएं कि जितनी बातें ऑन एयर बताई जाती हैं और जितना प्यार और जितनी सख्तियां और जो कुछ भी क्लिप्स में नजर आ रहा है, ये सब कुछ आप किसको फील होता है ये?
4: जी सर, काफी कुछ बहुत हद तक रिलेट किया जा सकता है और मतलब आपके शोज और आयशा जी के शोज जब भी सुनते हैं तो काफी कुछ सीखने मिलता है, बीइंग हाउ टू बी प्रैक्टिकल. बहुत सारी चीजें आपके शोज से भी मिलती हैं कि प्रैक्टिकली कैसे लाइफ में आगे बढ़ सकता है कोई. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई फील इज कि जो हो गया सो हो गया, जो आगे आने वाला है उसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ये भी काफी हद तक सीखने मिलता है. सो इट्स अ रियल ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ रेडियो आजाद टीम एंड टू बी विथ यू ऑल.
0: So grateful. Thank you very much. The feeling is mutual. And we are actually honored for your presence and all the services and all the time that you give to Radio Azad. So very grateful. Thank you very much, Radha ji. Meherbaan hai, hamare saath karte hain unse baat. Radio Azad, you're on the air.
5: Assalamu alaikum, Khan ji.
0: Wa alaikum assalam, Meherbaan. Kya hal chal hai?
5: बेहतरीन, जबरदस्त. आपके साथ 11 साल का सफर हमारा पूरा हो गया, खान जी.
0: इसका मतलब
5: तकरीबन 11 साल, हाँ जी.
0: पता ही नहीं चला भाई,
5: ये वाकई नहीं पता चला कैसे गुजर गया ये 11 सालों
0: में. क्योंकि हमारी जिंदगी में तो कुछ चेंजेस आई, लेकिन आपकी तो पूरी जिंदगी ऊपर नीचे होगी सारी की सारी.
5: ये खान जी जो स्पीच पावर है ना, जो जिना साहब देते थे या गांधी साहब या इन जैसे जो बड़े लीडर थे, उन्होंने देख ले दुनिया को कहां से कहां पहुंचा दिया. और आपकी भी इनके जैसी ही स्पीच है जिसने मुझे कहीं से कहीं पहुंचा दिया. हम तो अवाम है ना,
0: हम भी अवाम ही हम अवाम की आवाज बन गए ना. अवाम ही है जो आपके दिल और दिमाग पे गुजरता है, बस वो भी हमारे पे ही गुजरता है. तो हमने कहा चलो इसकी कोई ना कोई, तो कब तक घबराते रहेंगे, डरते रहेंगे, यू नो पहाड़ों चट्टानों के पीछे छुपते रहेंगे, तो क्यों ना इन चीजों के बारे में बात की जाए. बाकी खुद हो जाएगा जो भी होना.
5: हम दुआ करते हैं, पहले नहीं थे करते, अब करते हैं कि आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमा.
0: तो पहले क्यों नहीं करते थे?
5: पहले पता नहीं था इस चीज का.
0: पहले सिर्फ सुनते थे हम. बहुत सारी चीजें हमें ये नहीं पता थी कि हमने करनी है. हम समझते थे कोई और कर रहा है और हम इसका फल एंजॉय करेंगे. फिर हमें समझ आया कि फल एंजॉय करने के बाद उसके अंदर से जो बीज निकलता है फल के बाद, उस बीज को लगाना है और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है.
5: खान जी, इस चीज का पता भी नहीं था कि कोई आसानी किसी के लिए की जा सकती है या हमारे लिए भी कोई आसानी हो. ये मेरे ख्याल से जहलियत का दौर था, ये क्या था पता नहीं, लेकिन अजीब सा दौर था.
0: देखो 14 साल गुजरने के बाद भी मैं जब आसानी के, मेरी पहले तो ये समझना है कि मैंने ये काम हमने क्यों शुरू किया. ये बोल के लब आजाद हैं तेरे, मेरी जिंदगी बेइंतहा मुश्किल जिंदगी थी. सोचने वाले लोगों की जिंदगी जो होती है ना, या जब आप थोड़े से भी डिफरेंट होते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है और उसको अकेला काटना बहुत मुश्किल हो जाता है. अपनी ज़िंदगी के पहले 28-30 साल में बिल्कुल चुप था, मुझे लोगों ने बहुत कम इस तरह बात करते हुए देखा था. और वो मेरे अंदर चीज़ें थीं और वो उबल रही थीं. मैं कहना चाहता था लेकिन मामलात, हालात, वाक़यात, इन्वायरमेंट, फैमिली, लोग, यू नो जिन लोगों का ठेका था, किसी का मज़हब का, किसी का दुनिया का, और ये सब खुद भी मिजरेबल थे और हम भी मिजरेबल थे और कोई किसी का कोई पुरसाने हाल भी नहीं था और कान पड़ी आवाज़ नहीं सुनाई देती थी. तो फिर जब मैं रेडियो पे आया, मैंने देखा कि ये शुरू में जब मैं रेडियो पे आए तो म्यूज़िक और चिट चैट और गपशप ही लगाने आए थे, लेकिन जब मैंने देखा कि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि, और फिर मुझे समझ आया कि क्यों जब मिलिट्री कूज होते हैं, यू नो जब बगावतें होती हैं, तो क्यों रेडियो और टीवी चैनल्स जो होते हैं उन पे पहले काबू पाया जाता है. ये जो ज़राए अबलाग जैसे कहते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी. दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ. यू कैन ऑल्सो लिसन टू आर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us. इसके अलावा अगर आप पोइम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं. मिक्स क्लाउड पे स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर. आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं. और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद. दो हमें याद रखिएगा, ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा. खुदा हाफिज़.
6: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
7: Assalamu alaikum. Here are the blessings of the day of Arafah from Inspire FM. During Arafah, Allah is believed to forgive the sins of those who sincerely repent and seek His forgiveness. These blessings of the day of Arafah were brought to you by Inspire FM. Keep listening for more information.
8: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
9: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
10: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free, no-obligation market appraisal.
9: We can also offer guaranteed rental income.
10: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
7: Assalamu alaikum, this is Noor and you're listening to Inspire FM. Today we will be motivating and giving tips to our upcoming exam sitters. Flip the page, hum a tune, study morning, night and noon. Beat the stress, keep your cool, learning smart is the golden rule. Thank you for listening to these exam prep jingles. Tune in to Inspire FM to find out further information.
11: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
12: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
13: And now, get ready for your new weekly dose of sports talk.
14: It's Sportscast, the show where we dive into the latest sporting events, the hottest debates, and the legacies that make sports unforgettable.
15: Join us every Monday at 7 p.m. as we break down the action, share our takes, and go head-to-head on the big sporting questions.
14: Sportscast, your new home for sports talk. Don't miss it.
16: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
0: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे ओनली ऑन इंस्पायर एफएम
17: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
0: Aur phir maine aahista aahista dekha ki is kitni powerful cheez hai. پھر کتاب پڑھنے سے مجھے پتا چلا کہ سننے کا دھیان, یہ پہلی جو چیز بتائی گئی یہ بہرے ہیں اور گونگے اور اندھے تو بعد میں ہوتے ہیں, تو وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو مس کر رہے ہیں, اور سامنے تھے چیزیں, ریزلٹس سامنے تھے, بس ہاتھ مجھے ڈالنا تھا صرف, لیکن اس کے لیے سوچنا تھا, سمجھنا, ایک پلاننگ کی ضرورت تھی, اور جب میں نے وہ کام کرنا شروع کیا تو زندگی اتنی آسان ہو گئی, اور جیسے جیسے میں بولتا گیا ویسے ویسے میں اپلائی کرتا گیا اپنی ذات کے اوپر, تو ریزلٹس بھی آنا شروع ہو گیا, وہ ریزلٹس اب لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کیا, تب مجھے سمجھ آئی رب کیوں اس نے ہمارے لیے زندگی کو اتنا آسان کیا ہوا ہے. رشتے ایک آسان کام تھے, دنیا ایک آسان کام تھا, ہم نے اس کو مشکل کیا, پھر اس مشکل کو تکلیف دہ حد تک عذاب بنایا, اور پھر اسی میں سے ہم کچھ نہ کچھ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑے کمال کیے, خود ہی اپنے راستے میں کھڑے ہیں, خود ہی فرکشن, خود ہی ویئر اینڈ ٹیئر کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہر انسان جو ہے وہ اپنی پوری لائف کا جو پوٹینشیل ہے اس میں سے 2% 5% کہیں پہنچ پاتا ہے, لیکن ان تمام نان اسینشلس کو اگر راستے میں سے ہٹا دیا جائے, ایموشن کو صحیح طریقے, ایموشن کو ویکنس کے طور پہ یوز کرنے کے بجائے اسٹرینتھ کے طور پہ یوز کیا جائے, لاجک کو, گفٹس کو اور لوگوں کو ساتھ ملا کے اگر جوڑ دیا جائے تو میریکولس افیکٹ ہو سکتا ہے, اور وہ 2% 200% اگر انسان اپنی زندگی میں ریزلٹس دے سکتا ہے, اور میں نے پھر اپنی زندگی کے 10-15 سالوں میں وہ ریزلٹس دیے جو میں پچھلے 25-30 سالوں میں نہیں دے سکا, اور اسپیشلی پچھلے 5 سالوں میں میں نے اپنی زندگی کو ان لائنس کے اوپر میں جتنا پرسنٹیج بڑھاتا چلا جا رہا ہوں, جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں, جو کچھ میں کر رہا ہوں آن دی ایئر, وہ اس سے ریزلٹس میرے جو ہیں پوری زندگی ایک طرف اور پچھلے 5 سال ایک طرف, تو اتنا اچھا ریزلٹس آ سکتے ہیں, تو کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں کہ اگر وہ یہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر دیں. کئی لوگ میرے ساتھ چلے, انہوں نے کیا, ان کی زندگی کمال ہے, جس میں سے ایک عثمان بھی اور باقی بھی کچھ لوگ شامل ہیں, اور جو لوگ آج بھی انہی سٹرگلز میں ہیں جو 2, 4, 5, 10 سال پہلے تھے, وہ اسی طرح اسی سٹرگل میں تھک جائیں گے, اک جائیں گے, پک جائیں گے, ایگزاسٹ ہو جائیں گے, اور کسی چیز کو اینڈ تک نہیں پہنچا پائیں گے, اور وہ اگر خوش ہیں بھی تو وقتی طور پہ, صرف ایکسائٹمنٹ ہے ان کی, وہ لمبی ہیپینس ان کو نہیں مل سکتی. تو ساتھ ساتھ اگر آپ فگر آؤٹ کریں گے کہ میری انسیکیورٹیز, میرے کمپلیکسز, میرے چیلنجز کیا ہیں, اور میرا گفٹ اتنا اسٹرانگ ہے, مجھے اس پہ فوکس کرنا ہے, اور باقی ساری چیزیں خود بخود ہو جائیں گی, تو یہی زندگی آرٹ کا نمونہ بن سکتی ہے, اور آپ آرٹسٹ بن سکتے ہیں, اور ہر بندہ جو دوسرا چھوٹے موٹے آرٹسٹ کو دیکھ کے ہم مطلب عجیب آو کا شکار ہو جاتے ہیں, تو لوگ آپ کو بھی سب سے بڑا آرٹ زندگی بنانا ہے, اپنی زندگی کو آرٹ کا نمونہ بنانا ہے, اس سے ریزلٹس نکالنا ہے, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے, اور وہ اسی میں آپ کی آسانی ہے, جیسے رب کہتا ہے تم شکر ادا کرو میں تمہارا شکر بڑھا دوں گا, تو جتنے بھی شکر گزار لوگ میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں ان کی زندگی کو 4 چاند لگا دیے ہیں دوسروں نے بھی, اور ایکچولی شروع انہوں نے خود کیا تھا, تو یہ وہ پورا پروسیس ہے جو کہ ایکسپلین کرنا تھا اسی بہانے. جی عثمان.
5: ہاں جی, آپ کا پچھلے کوئی جتنی دیر سے آپ ریڈیو شو میں ہو, کوئی ایک لسنر جو آپ کو یاد ہو, مجھے جس نے ہٹ کے بات کی ہو؟
0: نہیں, ہٹ کے بات کرنے والے کام ہیں, لیکن اور اپنا اپنے پرسنالٹی لوگوں کی ہوتی ہے, جب بھی میں 100% الرٹ ہوتا ہوں نا اور چپ بیٹھا ہوں, تو اس کا مطلب ہے ایم آل ایئرز, آپ نے کوئی نئی بات کی ہے, آپ نے کوئی نیا کام کیا ہے, یا کوئی نیا مشورہ دیا ہے, یا نئی تھاٹ لے کے آئے, یا کوئی اوریجنل تھاٹ ہے آپ کی, اور آپ جو اگر میں آپ کو 5 سال سے جانتا ہوں تو پچھلے 5 سال والی باتیں آپ نہیں کر رہے, اگر آپ روندو ہیں تو 5 سال سے رو رہے ہیں, پریشان ہیں تو 5 سال سے پریشان ہیں, فائنینشیل ایشوز ہیں تو 5 سال سے وہی فائنینشیل ایشوز ہیں. آپ یقین کریں میرے ارد گرد لوگ ہیں جن کے فائنینشیل ایشوز ہیں, تو میں جب ان کو چیزیں بتاتا ہوں یہ کریں وہ نہ کریں, وہ میری بات نہیں سنتے, وہ پچھلے 5, 10, 15, 20, 25, 30 سالوں سے آج بھی فائنینشیل پرابلمس کا شکار ہے. جس نے سنا 3 سے 5 سال میں اس کے کوئی فائنینشیل ایشوز نہیں, جو اپنی کمپنیز میں کچھ چیزیں چاہتے تھے جن سے میری بات ہوئی, انہوں نے بات سنی, سمجھی, اپلائی کی, ان کی زندگی آسان ہوگی. جن لوگوں کو اپنے سائیکولوجیکل پرابلمس تھے, جنہوں نے خود پر کام کیا, وہ سب کا سب دور ہو گیا, سارے مسائل دور ہو گئے, لیکن اس کے لیے ایمان لانا پڑتا ہے, چیزوں کے لیے تھوڑی کوشش کرنی پڑتی ہے, ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے, رپورٹس اینڈ ریٹرنز ہوتی ہیں کہ میں یہ کیا, ایسے ہوا, یہ نہیں سمجھ آ رہا, اس کو کیسے کریں. جب تک آپ اپنے آپ کو سیانہ سمجھتے رہیں گے لائف کے سبجیکٹ میں, آپ ہمیشہ فیل ہوں گے, کیونکہ آپ یا تو ڈاکٹر ہیں, ہمیں لوگ کہتے ہیں جی آپ, وہ کہتے ہیں جی میں ڈاکٹر عمران, تو وہ ڈاکٹر جب آپ کہتے ہیں نا, تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے کچھ ہے, اور بہت کچھ آپ کبھی نہیں حاصل کر پائیں گے. تو جب آپ عمران کہیں گے, صرف پیچھے فوجی نہیں لگائیں گے, مطلب اپنا رینک نہیں لگائیں گے, یا پی ایچ ڈی نہیں لگائیں گے, یا بی اے ماسٹرز پی ایچ ڈی یا یہ سب لگائیں کے علاوہ جب آپ اپنا نام لیں گے, तो आपको पता चलेगा मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, तो समझ आएगी। अक्सर लोग कहते हैं जी आप क्या करते हैं, उन्हें कहा जी मैं डॉक्टर हूँ, ने आप कौन हैं, वो कहते हैं जी मैं डॉक्टर हूँ, तो वो एक्चुअल में आप कौन हैं का मतलब आप कौन से इंसान हैं, क्या सोचते हैं, विजन क्या है आपकी, करना क्या चाहते हैं आप, अब तक क्या किया है, आगे कहाँ जा रहे हैं आप। जब आप इन चीज़ों के बारे में काम करने की और बात करने की कोशिश करेंगे, मैंने अपने एक बात जो मैं अपने लिसनर्स को क्रेडिट देना चाहूँगा, वो जिस तरह सवाल पूछते हैं, जिस तरह बात करते हैं, जैसे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जितनी वैल्यू एडिशन मेरे अंदर हुई है पिछले 14 सालों में, और उससे पहले जो मैं रेडियो बोल के लब आजाद तेरे 3 साल मैंने और भी किया, इन 17 सालों में मेरी पूरी ज़िंदगी एक तरफ, और ये इन 17 सालों में इतनी मेरी लर्निंग हुई है जो मैं कभी भी नहीं सोच सकता था। मैं क्योंकि हज़ारों लोगों से बात थोड़ी करता था हर साल में, और नए नए लोग, नए नए आइडियाज़ इस काम में होने की वजह से, इस काम को करने की वजह से जो मैंने सीखा, जो चीज़ें मैं करना चाहता था उसके लिए मैं परमानेंट, मेरे तमाम सारी सेंसेस जो हैं अलॉन्ग विद 6 सेंस, 6 सेंस हर वक्त ऑन रहती हैं कि मैं कोई नई चीज़ देखूं, सोचूं, समझूं, अप्लाई करूं जो मैं अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूं। मेरा जहन हर वक्त कंटेंट बनाता रहता है। मैं सिर्फ एक काम अब ज़िंदगी में कर सकता हूं जब तक मैं बोल के लब आजाद तेरे कर रहा हूं। मैं सिर्फ बोल के लब आजाद तेरे कर रहा होता हूं और उसी से ही मुझे सारे रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। मैं जो बन पाया हूं वो भी इसकी वजह से, और जो नहीं बन पाया वो भी इसी की वजह से। तो मेरे लिए ये इतना इम्पॉर्टेंट है, और लोगों ने आकर जो कंट्रीब्यूट किया है, जो इज़्ज़त अफजाई की है, जो प्यार मोहब्बत दिया है, जो दुआएं की हैं, बहुत सारे लोग ये वीडियो का जब कंटेंट सुनते हैं या ऑडियो का, वो कहते हैं हमने कभी ऐसा रेडियो शो या टीवी शो नहीं देखा, और स्पेशली जहाँ से हम लोग आ रहे हैं वहाँ तो लोग शेयर ही नहीं करते, प्योर जज्बात नहीं शेयर कर सकते, लोग क्या कहेंगे, कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ये क्या होगा, वो क्या होगा, आई वुड कम अक्रॉस लाइक दिस लाइक दैट, यही चक्रों में मेरा बनता है नहीं बनता, करना चाहिए, अपने अंदर की लड़ाइयों से ही लोग नहीं फारिग हो रहे, कॉन्ट्रीब्यूट उन्होंने क्या करना है। सो जो जो इससे बाहर निकला है उसकी ज़िंदगी में मैंने चेंजेस देखे हैं, जो जो इससे बाहर नहीं निकल पाया वो ना अभी और ना कभी, वो इसी तकलीफ़ में, परपेचुअल मिजरी जिसे मैं कहता हूँ, एक कांस्टेंट अजाब है जिसका हम शिकार हैं, और ये हमने अपने अंदर अपनी सोचों से पैदा किया है। अमीर तरीन लोग भी उतने ही कमज़ोर हैं, डिग्रियां लेने वाले भी उतने ही कमज़ोर हैं जितने जिनके पास डिग्रियां नहीं हैं। अमीर भी इस अजाब में, डर के अजाब में, और ऐसा करना और वैसा नहीं करना के बीच में फंसे हुए हैं, और गरीब भी इसी तरह ही हैं, कमाल करने वाले लोग भी हैं, बाकमाल और बेकमाल, अकलमंद कम अकल, सारे इसी चक्कर का शिकार हैं, हालांकि काम बहुत सिंपल था। कि नहीं उस्मान?
5: हाँ जी, आपका आने वाले इस साल में या फिर आने वाले कुछ सालों में कोई ऐसा चीज, कोई ऐसी सरप्राइज जो अभी आप बताना चाहते हैं आज?
0: अभी तो ये रेडियो आज़ाद जो है ना, इन अगले 8 महीनों में रेडियो आज़ाद वो सब कुछ करेगा जो अभी तक रेडियो आज़ाद ने पिछले 14 साल में नहीं किया। हम जो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जो सिस्टम, अभी हम सिस्टम बनाने के प्रोसेस में हैं। जब एक चीज़ एक जगह तक जानी होती है तो उसका पूरा असेंबली लाइन ही और होती है, उसकी जो, उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, उसके जो टैलेंट्स चाहिए होते हैं, जो लोग चाहिए होते हैं वो और होते हैं, जो सेट ऑफ बिलीव, सेट सिस्टम जो चाहिए होता है वो और होता है। उसी चीज़ को ये बिल्कुल ऐसा, अगर आप एक बिलिस्टिक मिसल बनाते हैं, और मैंने आप एक छोटा पहले बनाते हैं वो 500 माइल तक या 1000 मील तक जाता है, तो उसका टोटली डिफरेंट सिस्टम होता है। उसी सिस्टम के अंदर बाकी चीज़ें डाल के उसकी पावर को इन्हेंस कर दिया जाता है कि ये 2000-4000 मील तक आगे ये लॉन्च किया जा सके। बिल्कुल इसी तरह, या कोई भी सैटेलाइट जैसे होती है, जैसे आप चांद तक पहुँचे, ये डायरेक्ट नहीं पहुँच गया, बीच में छोटी छोटी एंडेवर्स करते हैं आप, ऑब्जेक्टिव्स करते हैं। तो पहले जो आपने देखा है, जो चीज़ ऊपर तक जाती है उसके फ्यूल के जो टैंक्स होते हैं ना, वो साथ साथ गिरते जाते हैं जो जो चीज़ यूज़ हो जाती है, क्योंकि एक्स्ट्रा वज़न नहीं चाहिए होता आपको। तो इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें, अब हम उस जगह पर हैं जहाँ पर आगे कितनी बड़ी फ्लाइट होगी और भरनी है हमने, वो अभी डिसाइड होगा। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, और बाकी जो फिल्म्स आने वाली हैं, जो इंशाल्लाह मैं काम कर रहा हूँ जिन चीज़ों के ऊपर, वो पाकिस्तान की एक फिल्म है जो आनी है, वो पता नहीं कब आएगी, क्योंकि पाकिस्तान में किए हुए काम का कुछ नहीं पता होता कब क्या होगा, वहाँ इन्वायरमेंट ही ऐसा है, हर चीज़ अनप्रडिक्टेबल। जो फिल्म है, कुछ प्लेज है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल की एक दो चीज़ें आने वाली हैं, कुछ डोमेस्टिक लेवल की एक दो चीज़ें आने वाली हैं, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा रेडियो आज़ाद के रेफरेंस से कुछ चीज़ें हैं जो कि वो जो भी इंटरनेशनल भी काम है आएगा तो रेडियो आज़ाद में, और जो नेशनल होगा या डोमेस्टिक होगा वो भी रेडियो आज़ाद के ऊपर ही आएगा। काम हम सारे मिलकर सारी चीज़ें रेडियो आज़ाद पर ही कन्वर्ज करती हैं। सो बहुत सारी نئی چیزیں لیکن ایک دو سرپرائزز ہیں انشاءاللہ وہ وقت کے اوپر. اور تب تک لوگ ابھی تک ہمارے لوگوں نے جو سیکھا ہے, ہم نے جو سیکھا ہے اس سیکھ کو انکارپوریٹ کر کے ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے اس کے اوپر ہمارا فوکس زیادہ ہے, بجائے اس کے کہ ہم نئی نئی چیزیں دیں. اس سال میں ہم ایک کچھ چیزیں ایسی بنانا چاہتے ہیں جس کے بعد ہم اکثر آپ کو چیزیں دے سکیں جیسے باقی بہت ساری چیزوں میں ہم کرتے ہیں.
5: چلیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے خان جی. تو سفر ابھی تک الحمدللہ بہت اچھا گزرا ہے اور ہم نے جو پیٹی ہے نا وہ سیٹ بیلٹ وہ باندھ لی ہے آپ کے ساتھ, تو دیکھیں کہاں تک جاتے ہیں آپ کے ساتھ.
0: بالکل ٹھیک. ہم نے کیونکہ 11-12 سال میں بہت کچھ بدل گیا ہے, جیسے ریڈیو آزاد کی سلوگن لائن بدل گئی. ریڈیو آزاد جب شروع ہوا تھا تو وائس آف دا پیپل تھا, اور اس کے بعد اس کو وے یو وائس میٹرز کیا گیا ہے. ریڈیو آزاد کا لوگو اور تھا, لوگو ابھی آپ کو چینج ہوا ملے گا. ریڈیو آزاد کی جو آپ کو جو میوزک یو نو جو ملتا ہے آج کل ریڈیو آزاد کا جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے, ترانہ جو ہے ریڈیو آزاد کا اینتھم جو ہے وہ بدل چکا ہے. ریڈیو آزاد کا پوری کلر اسکیم بدل چکی ہے. جب اگر آپ نے پہلے 10-15 سال پہلے دیکھا ہوگا, ایک دیوار تھی اس کے اوپر ایک پلاسٹک کا بینر ہوا کرتا تھا, اسکن لگی ہوتی تھی, وہاں سے پھر ہم نے یہ چیزیں شروع کی ہیں. اور اس کے بعد اب ریڈیو آزاد کی پوری کلر اسکیم, ویڈیو کوالٹی, چیزیں بدل چکی ہیں. اور شو بول کے لب آزاد نے تیرے بہت چینج ہوا ہے, ہماری ٹیم میں بہت ساری چینجز آئی ہیں, بہت سارے نئے چہرے, نئی آوازیں آپ لوگوں تک آئی ہیں. اس میں ریڈیو آزاد کی ٹیم نے بھی ایوالو کیا ہے کچھ. ٹیم کو ایوالو کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ مختلف جگہوں سے مختلف ایکسپیرئنسز کے ساتھ لوگ آتے ہیں, تو چیزیں جو ہیں وہ جیسے دیسی جو کلچر ہوتا ہے نا, ہم یو کہتے ہیں نا یو کین ٹیک دا بوائے آؤٹ آف دا جنگل بٹ یو کانٹ ٹیک دا جنگل آؤٹ آف دا بوائے. ہم لوگوں کو جن چیزوں کے جیسے کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں یا پروفیشن ہوتا ہے, وہاں ہمارا ٹوٹلی اور بیہیویئر ہوتا ہے. اسی لیے میں بیہیویئر کے اوپر اتنے شوز بھی کرتا رہتا ہوں. لیکن جب ہم کوئی گھر میں, ہمارا ٹوٹلی اور بیہیویئر ہوتا ہے. میں اپنے گھر کے اندر بیہیویئر چینج کرنے والا, جب تک آپ کا اٹھنا آٹومیٹک وائرنگ جو آپ کی ہے نا برین کی, جب تک یہ وائرنگ ایک سسٹم کے اوپر نہیں جائے گی جیسے خدا بنانا چاہتا ہے انسان کو, وہ اس وقت تک اس کا پوٹینشیل کبھی سامنے نہیں آئے گا. اسی لیے ہزاروں سال لگ گئے اس کام میں. ورنہ اگر ہم خود یہ سسٹم بنا لیتے, کیونکہ وہ ابھی سسٹم کے بیچ میں ٹھیکے دار آ جاتے ہیں, وہ بننے نہیں دیتے سسٹم کو, وہ اپنی اپنی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. جب تک آپ ایک چیز کے ساتھ سنسیریٹی کے ساتھ فوکس نہیں کریں گے ایک مین گول پہ اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیوز پہ, تب تک بہت ساری چیزیں آ نہیں سکتی. تو بہت میں ایسا کیوں, کیونکہ میں جس گھر میں بڑا ہوا تھا وہاں میرا فوکس کسی وجہ سے خان جی نے یا میری کچھ ویکنیسز نے اس کو فوکس کر دیا, کیونکہ مجھے سروائیو کرنے کے لیے بھی کچھ بیسک چیزیں بھی نہیں آتی تھیں کرنی. اس کے بعد میں جس انسٹیٹیوشن میں گیا وہاں پر سب کچھ ہی فوکس میں تھا, اور اس کے بعد جو سارے سسٹم بنے ہوئے تھے وہ ہر بندے کو اپنے اپنے کام اور اپنی چیزوں کا اور اپنی جورسڈکشن کا اور اپنے رول ڈیفائن کیے گئے تھے. لیکن یہ جیسے جیسے ہم یہ زندگی میں ہم آتے ہیں, کیونکہ گھروں میں بھی ایسا سیٹ اپ نہیں, اس لیے گھروں میں بھی دیکھیں پہلی پیڑھی اسٹرگل کرتی ہے, دوسری پیڑھی بھی اسٹرگل اگر کر رہی ہے نا, اور تیسری پیڑھی بھی اگر اسٹرگل کر رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے اس پوری چیز میں سب کچھ ہے لیکن اس پورے تین پیڑھیوں میں ایک بھی عقل والا انسان پیدا نہیں ہوا. یعنی کہ اگر یہ تین پیڑھیوں کا مطلب ہے کہ آپ تھرڈ جنریشن ہے آپ کی, اور ابھی تک آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں, ابھی تک آپ فائنینشیل فریڈم آپ کو نہیں ملی ہے, اس کا مطلب ہے پچھلے تینوں جنریشن کے لوگ انہوں نے اپنا کام پورا نہیں کیا. ورنہ تین جنریشن کے اندر سب کچھ بدل جانا چاہیے, آپ کے فائنینسز بدل جانے چاہیے, آپ کی سوچ بدل جانی چاہیے. دادے کا جو پرابلم تھا اگر وہ فادر کو بھی ہے اور فادر کا پرابلم بیٹے تک آ گیا, تو اس کا مطلب ہے اوپر کے دو بندے نکمے تھے, انہوں نے سیلفش ہو کر چیزیں کی, برین کو استعمال نہیں کیا, وہ فیئر فل تھے. اسی لیے آج تیسری جنریشن کو بھی وہی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے, حالانکہ ایک نے صحیح کام کیا اور دوسرا اس سے آگے لے کے چلے گا, تیسرا اس سے آگے لے کے چلے گا, ریلے ریس کی طرح. اور ہر بندہ اپنی اپنی لائٹ ہوگا اور اپنی سپیڈ بڑھائے گا آہستہ آہستہ, اور پھر وہ فائنینشیل فریڈم کو بھی پہنچے گا. اسی طرح اگر برین جہالت میں بند تھا چوتھی پیڑھی کا, پھر تیسری کا, اور پھر دوسری کا, اور اسی طرح اس کو لے کے آئے وہ زندگی میں, تو چوتھی پیڑھی بھی اسٹرگل اور سفر کرتی رہے گی. انٹلیکٹ کو بھی بڑھانا آپ کا کام ہے جس پیڑھی میں بھی آپ ہوتے ہیں. اصل آنر کرنا اپنے فور فادرس کو, اپنی فیملی کو, اپنی بلڈ لائن کو, رب کو سب کرنا ہوتا ہے. سسٹم بنانا اگلوں کے لیے, پچھلوں کے عذاب آگے نہ چلانا, उसको रोक कर नई चीज़ें बनाना, नए काम करना और कुछ नई चीज़ बना कर दे के जाना। इसीलिए मैं कितने लोगों को जानता हूँ एक्चुअल में, जब अगर आप उनकी बात सुने तो वो सिर्फ वाइनिंग कर रहे होती हैं पिछले जो लोग होते हैं उनकी दूसरी तीसरी जनरेशन की, क्योंकि उन्होंने इसका मतलब वो कह रहे हो नहीं रहे होते, लेकिन मतलब यही होता है कि हम आज तक इसलिए गरीब हैं कि पिछले ऐसे थे, हम आज तक इसलिए जाहिल और कम अकल रह गए कि पिछले

0: बढ़ेगी, एवोल्यूशन में वो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता उसमें प्रोग्रेस होगी। अगर मैं किसी रिश्ते में हूँ तो रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होगा, वो डिटीरोरेट या डेट्रीमेंटल होकर नीचे गिर रहा है, मुझे नहीं चाहिए। इसका मतलब है कहीं पर कोई काम ठीक नहीं हो रहा। जितने बिजनेसेस मैंने पिछले 5-7 सालों में, मैंने 2-3 बिजनेसेस में बिल्कुल मैं पीछे हट गया, क्योंकि वो उन बिजनेसेस ने आगे कहीं नहीं जाना था। आज भी वो बिजनेसेस या वहीं खड़े हैं या उससे बहुत नीचे चले गए, क्योंकि उसके लिए जो रिक्वायरमेंट थी, वो जो एलिमेंट्स थे, उनमें हार्मोनाइजिंग इफेक्ट नहीं क्रिएट हो सकता था। लेकिन जितने काम मैंने किए, जिसको मैंने नहीं छोड़ा, वो बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गए। सो बिल्कुल, जब आप ये सोच लेंगे कि आप प्रॉब्लम का हिस्सा हैं या सोल्यूशन का, तो फिर आप सोल्यूशन के लोग ढूंढेंगे अपने इर्द गिर्द, और फिर आप देखें कमाल कैसे होते हैं। आप अपनी कुछ चीज़ें छोड़ेंगे, दूसरे लोग अपनी कुछ चीज़ें छोड़ेंगे, और थोड़ी थोड़ी एडजस्टमेंट्स के साथ जब चीज़ें बनेंगी तो कोई बंदा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा होगा, थोड़ा थोड़ा सबको मिलेगा, और मिलकर हम बहुत ज़्यादा क्रिएट करेंगे। इन असूलों के ऊपर जितने रिश्ते मैंने पिछले 10 साल में बनाए, जितने बिजनेसेस के काम मैंने पिछले 10 साल में किए, सब ने कमाल किया, और उससे पिछले सालों की सारी चीज़ें मैं भूल चुका। बस मुझे सिर्फ एक्सपीरियंसेस याद हैं, क्योंकि उससे आइडियाज़ बनते हैं, उससे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, उससे आपका एक्सपोजर होता है। बार बार आप वही चीज़ें नहीं सीखते। मेहरबानी हमारे साथ करते हैं उनसे बात। रेडियो आज़ाद, जी रौंदिए। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम मैम,
1: आपको बहुत मुबारक हो 14 ईयर्स, और आयशा जी को भी।
0: आपको भी बहुत मुबारक हो। आपके कितने साल हो गए रेडियो आज़ाद को तकलीफ देते देते?
1: So I think 7 years हो गए।
0: ठीक है, और उसके बदले में रेडियो आज़ाद ने आपको कितनी तकलीफें दी?
1: नहीं सर, काफी सारी आसानी की है रेडियो आज़ाद ने।
0: आपको महसूस, आपकी जात के अंदर कोई फर्क महसूस होता है प्रोग्रामिंग और बाकी चीजें छोड़कर?
1: सर मुझे लगता है मैं थोड़ी इवॉल्व कर गई हूँ, एंड अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है चीजों की।
0: Okay.
1: और काफी सारी आई थिंक चेंजेस आई है, मुझे लगता है।
0: मजीद क्लैरिटी ऑफ आई है कुछ थॉट में?
1: हाँ जी, बहुत सारी।
0: Okay. कुछ चीजें आपने लगता है कि कुछ चीजें आपने अपने लिए मजीद आसान की हैं, जिंदगी की सोचने के तरीके, काम करने के तरीके?
1: सर सोचने का तो पता नहीं, वो तो आपका शो सुन के हो जाता है। जब भी कोई कंफ्यूजन होती है, या आयशा जी की जो तस्नीम के साथ शोज होते हैं उनसे हो जाती है।
0: ठीक है,
1: बट ओवरऑल वैसे बहुत आसानी की है। आपके शोज से सीख के, आपसे पूछ के, वो इंप्लीमेंट जो भी मैंने किया है, अल्लाह का शुक्र है उससे तो बहुत सारी चीजें।
0: जब आदमी किसी टीम का हिस्सा बनता है, जब आदमी किसी प्रोफेशनल कंपनी का हिस्सा बनता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का, या काम करने वहां जाता है, अपना रोल प्ले करता है, आपने कभी ये सोचा कि वहां पे काम करने से आपकी जात पे, आपके सोचने पे, आपके रिजल्ट्स पे, आपके आउटकम पे इतना फर्क आएगा? कभी सोचा था आपने कि किसी कंपनी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी ग्रुप को ज्वाइन करने से मेरी जात में 7 सालों में इतने फर्क आ जाएंगे?
1: नहीं सर, नहीं सोचा था एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारी आप लोगों की ओवरऑल टीम में बहुत, आई थिंक आप जिस तरह से लोगों को गाइड भी करते हैं, अपनी टीम को भी गाइड करते हैं, और जैसे चीजें बताते हैं, दैट इज वेरी डिफरेंट। क्योंकि यूजुअली जैसा भी आप थोड़ी देर पहले भी कह रहे थे ना, लोग फोकस्ड होते हैं एक दो चीजों के ऊपर ही, पर्सनल ग्रोथ पे ज्यादा फोकस्ड होते हैं।
0: लेकिन आपको लेकिन क्या लगता है, वो जो पर्सनल ग्रोथ आपकी जब होती है ना, देखें आप फर्ज करो एक काम करते हो, उसके अगर आपको थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, जैसे आपने मल्टीनेशनल, आप मेन स्ट्रीम में भी काम कर रहे होगे या आपने किया होगा, तो उसमें वो लोगों को कुछ आइए, हमने जिस काम के आपको पैसे दिए आप सिर्फ वो करें और घर जाएं, ऐसा ही है?
1: हाँ जी।
0: लेकिन कौन सा ऐसा काम है जिंदगी में, या कौन से कोई ऐसे रिश्ते आपने देखे जिसमें रिश्ते के अंदर आप जाएं और आप इंसान इंसानी हालत में आना शुरू हो जाए?
1: हाँ जी, रेडियो आज़ाद से देखती।
0: आपके इमोशंस जो हैं वो आपके काबू में आए और आप लॉजिकली चीज़ों को देखें और आप अपनी जात से बाहर निकलकर ऑब्जेक्टिवली भी चीज़ों को देख सकें।
1: हाँ जी,
0: ऐसे फायदे
1: आप लोग करते हैं।
0: हाँ, तो ऐसे फायदे आपने कहीं और, या आप किसी को जानते हैं, या किसी और से आपने ये महसूस किया है कि मैं किन काम करने जाऊंगी और मेरे से सिर्फ मेरे वाला काम लिया जाएगा और बीच में मैं जहां कंट्रीब्यूट कर सकूंगी इतना किया जाएगा लेकिन उसके बदले मुझे इतना कुछ मिलेगा, ये कभी सोचा था आपने?
1: नहीं सर, और वो एक ग्रोथ और कलेक्टिव उसमें नहीं सोचा था।
0: और वो एक देसी जगह होगी? ये सो इस बात पे ऐसी हंसी हर बंदे की निकल जाती कि देसी ग्रोथ आसानी और एक दूसरे के साथ, ये तो, ये तो घरों में भी बहुत कम होता है, ऐसा ही है?
1: बिल्कुल ऐसा ही है।
0: तो अब क्या लगता है आपको, अगर आप वापस जाएं, कि अगर आप 7 साल पहले जिस वजह से भी आई होंगी या जैसे भी यू बम्प्ड इनटू रेडियो आज़ाद, अगर वो चीज़ आप, या फिर आपकी

0: पर्सनैलिटी थोड़ी शाय भी है और रेडियो का काम जो है, जैसे मेरी शाय है तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है, उसके बावजूद आपने ये स्टेप लिया और आप इसका हिस्सा बनी, तो आप कभी कभी सोचती हैं कि अगर मैं ना बनती तो मेरी, आपको क्या लगता है आपकी लाइफ में इस वक्त क्या होता और क्या ना होता? एनी आइडिया?
1: सेम लाइफ होती बहुत ही, आई थिंक जो जैसे मैंने अपनी लाइफ को पहले कभी छोटे होते हुए या किसी एक टाइम पे इन्वेजन किया था, अब मुझे लगता है वो वैसे ही है जो मुझे चाहिए थी. एंड सेकेंडली, अगर मैं नहीं आती तो ऑफकोर्स ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती. आप अपने बारे में जो सेल्फ डेवलपमेंट आप सिखाते हैं हमेशा, वो नहीं होता कभी भी. और बहुत सारी चीज़ों का, जिससे अभी आपके बहुत सारे कॉलेज भी कह रहे थे कि अल्लाह ताला से रिलेटेड और बाकी चीज़ों से रिलेटेड जो आपको इतना डराया जाता है हमारे कल्चर के अंदर, वो चीज़ें भी आप उनसे भी बाहर नहीं आते. नहीं आती मैं एटलीस्ट. तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सपेक्ट नहीं करती थी, कि मुझे लगता था ये नॉर्म है हमारे कल्चर में और ये चीज़ें हमारी जैसे देसी उसमें ऐसे ही होती हैं. तो वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई थी आफ्टर ज्वाइनिंग रेडियो.
0: इसका मतलब है 7 साल में आपकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हुआ, उसके बाद आपकी खुशी का जो लेवल है, जैसे आप फील करती हैं अपने आप को वेर एवर यू आर मेंटली, उस पे भी कुछ बेहतर आपको लगता है, उसके अंदर कुछ स्टेबिलिटी और बैलेंस पैदा हुआ?
1: सर, मुझे, मैं खुशी पे इतना फोकस नहीं करती, मैं अपनी सेल्फ कंटेंटमेंट पे ज़्यादा फोकस करती हूँ. तो मुझे लगता है वो बहुत, जो मैं, जो मुझे चाहिए वो मुझे है मेरे पास.
0: आपके सुकून का जो लेवल है उसमें कोई फर्क पड़ा?
1: That's what I'm saying, कि वो मुझे मिल गई है.
0: हाँ जी, तो क्योंकि जब आपको एक चीज़ मिल जाती है ना सुकून जो अपने रब में दिखे, तो उसमें से बाकी जो लेवल्स हैं ना उसका अगर आपको पता ना भी हो तो वो लेवल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं. इसीलिए कंटेंटमेंट जो है, इत्मीनान कल्ब जिसे कहते हैं, दिल मुतमइन जिसके लिए जो है ना, वो हिंदी, क्योंकि आप आजकल जानो अरब हम ज़्यादा, मुतमइना जिसे कहते हैं ना, आप जब जब तक आप सुनना ना कहो ना, जब तक आप बरका ना कहो तो लोगों को समझ नहीं आती. पता नहीं तेल लगाने से हम बड़ा अवॉइड करते हैं खुद को. सो इन तमाम चीज़ों में बेहतरी हुई है. सो ये सुन के हमें अच्छा लगा कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ ज्वाइन किया, उसमें आपने सपोर्ट किया, उसकी वजह से आपकी ज़ात पे इतने अच्छा असर हुआ. अच्छा, आप लोग ये अक्सर सोचते या पूछते हैं, ये सब कुछ इसी को दिखाने बताने सिखाने समझाने से क्या होता है? इससे लॉयल्टी बढ़ती है इंसानों के अंदर, इससे लोगों को क्लैरिटी बढ़ती है, इससे लोग इमोशनली स्टेबल होते हैं, इससे लोग डिसाइड कर पाते हैं कि उन्होंने साथ रहना है कि नहीं रहना, इससे लोग आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोग्रेशन होता है उनकी ज़ात के अंदर, जो प्रोग्रेसिव डिस्कवरी होती है अपनी इग्नोरेंस के बारे में, उस पर बड़ा अच्छा असर पड़ता है, इससे रिश्तों पर बड़ा अच्छा असर पड़ता है, इससे इंसान के अंदर अख़ुव्वत पैदा होती है, भाईचारा पैदा होता है, फ्रेटर्निटी सोरॉरिटी किस्म की फीलिंग आती हैं. एक्चुअल में आप किसी चीज़ से कनेक्टेड होते हैं, और जब आप उससे डिसकनेक्टेड होते हैं ये तो आपको लगता है कि आप कोई चीज़ मिस कर रहे हैं, आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. ये तमाम चीज़ें ज़िंदगी में इसलिए की जाती हैं. ठीक है, और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी. दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ. यू कैन ऑल्सो लिसन टू आर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us. इसके अलावा अगर आप पोइम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे. स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं. और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं, जो है रेडियो आज़ाद. तो हम याद रखिएगा, ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा. खुदा हाफिज़.

0: यतीम विडो जो थी ना, उसके चार यतीम बच्चे थे और वो ना ऐसे आधा मील जैसे समझ जाती थी और ऐसे पौंड था उससे पानी लेके आती थी, उसमें पौंड में बतकें चल रही थी तो गंदा पानी लेके आती थी बच्चों के लिए। लेकिन यूके इस्लामिक मिशन के ने उसको एक नलका लगा के दिया, अभी उसके दो स्टेप पर है, उसको जाना नहीं पड़ता और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर उसको मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह
1: माशाल्लाह जी। और उसके आगे कौन सा है?
2: प्रेयर स्पेस स्पॉन्सरशिप है, ये मदीना मस्जिद के लिए 250 पाउंड।
1: अच्छा 250 पाउंड, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें मकसूद भाई, ये जो हमारा मस्जिद वाला है।
0: ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, 250 पाउंड वाला भी है, 500 पाउंड वाला भी है, और जैसे हम कह रहे हैं 100 पाउंड ईच भी, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी कोशिश है कि कितना ही ज़्यादा आप लोग दे सकते हैं इंशाल्लाह इसको इसके लिए दें इंशाल्लाह मस्जिद के लिए। तो इसमें 500 वाला भी है, सबका जारी है लाइफ। तो दूसरी हमारे पास 7,500 पाउंड एक मस्जिद इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश जहाँ सियारा लियोन में बना सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी प्रोजेक्ट है। 7,500 पाउंड में बहुत नीली 200 लोग इस मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं और इसमें एजुकेशन होती है, बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल भी चलता है, तो पूरी मस्जिद आपके 7,500 पाउंड।
1: माशाल्लाह जी, जिस तरह मकसूद भाई बड़ी तफसील से बता रहे हैं जी, इस गुफ्तगू को यहाँ से जारी रखेंगे। हमारे जो नए मेहमान हैं, मेहमान आप सबके लिए मेहमान हैं, हमारे साथी हैं, जनाब सीनियर साथी हैं, चौधरी मोहम्मद शरीफ साहब लुटन की बड़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, हमेशा उन्होंने वक्त दिया है, हमेशा उन्होंने जो है वो हर तरह से तावन किया है। तो आज वो जी उनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शरीफ साहब।
3: वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अकदस भाई, आज हम यहाँ एक बड़े नेक मस्जिद के लिए जमा हुए हैं
1: जी,
3: और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रेडियो इंस्पायर वालों का
1: जी
3: कि उन्होंने हमें वक्त दिया। और हमारी मस्जिद जो मदीना मस्जिद जो लुटन की एक बहुत पुरानी मस्जिद है, महकमा नंबर 2 सेंट्रल मास के बाद 2 नंबर पर यही मस्जिद थी, 1870 में इसका इफ्तिताह हुआ और इतने अरसे में कोई इसकी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकी। अब अल्लाह के फजल से साथियों ने मिलकर इसका एक प्रोग्राम बनाया है और मेन मकसद आज जो है उस मदीना मस्जिद की फंड रेजिंग के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। उसके साथ साथ चूँकि यूके इस्लामिक मिशन बरतानिया सारी दुनिया के मुल्कों खासन इस्लामी ममालिक जो गरीब ममालिक हैं उसके लिए कुर्बानियों का भी इंतज़ाम कर रहा है और जो गरीबे हैं लोग उनके लिए पानी का इंतज़ाम कर रहा है, खाने का इंतज़ाम कर रहा है। तो आप अपने ईद में इन तमाम मुल्कों में जितने भी लोग हैं उनको याद रखिएगा। ये एक बड़ा, मैं खुद आज 2 कुर्बानियाँ, 2 जो आज़ाद कश्मीर के लिए 2 कुर्बानियाँ लेकर आए मेरे सामने पड़ी हैं, मैं मकसूद भाई के अंडे को करूँगा। एक कुर्बानी जो है एक शेर गाय का 60 पाउंड है और फुल गाय जो है 410 पाउंड है। तो आज ही आ चुके वक्त है
1: शेर साहब, मुझे याद ही रहेगा। अच्छा, ये जो आज़ाद कश्मीर में कुर्बानी है उसका एक शेर 60 पाउंड का है?
3: 60 पाउंड का एक शेर है गाय का
1: जी,
3: और फुल गाय जो है वो 420 पाउंड।
1: अच्छा, 420 की
3: पाकिस्तान में कितना है जी?
0: पाकिस्तान में 490 पाउंड है,
3: 490 पाउंड पाकिस्तान में। कोई जाना चाहता है किसी इलाके में भी तो इंशाल्लाह, चूंकि जमा स्वामी पाकिस्तान का वहाँ एक बड़ा नेटवर्क है, अल खिदमत फाउंडेशन और यूके इस्लामिक मिशन के वो पार्टनर है, और इंशाल्लाह अल्लाह को हाजिर नाजर रखकर हम ये आपसे वादा करते हैं कि आपकी कुर्बानी, आपका दे हुआ एक एक पैसा वहाँ पहुँचेगा और आपको उसका अजर मिलेगा। तो वापस आते हैं, मेन प्रोजेक्ट जो हमारी मस्जिद का प्रोजेक्ट है, इसमें प्लीज़ हम तीन चार लोग यहाँ बैठे हैं, हमारा आज़ाद कश्मीर से हमारा तल्लुक है। मैं समझता हूँ मकसूद भाई को छोड़कर, लेकिन ये हमारे आजाद कश्मीर से ज्यादा हमारे
1: हमारे ज्यादा बंदे जो है वो बंदे बोलते हैं कि वो मकसूद भाई जो मस्जिद है उसके साथ है।
3: तो ये हमारे सीनियर मेंबर हैं, हमारी मस्जिद के रूए रवा हैं। तो मैं आपसे इल्तमास करूंगा कि बढ़ चढ़ कर इस प्रोजेक्ट में हिस्सा डालें। आप एक मसल्ला अपने वालदेन के स्वाब के लिए ले सकते हैं और अपने लिए भी अपना हिस्सा डालें, और उसमें मसाला कितने का जी?
0: 1,000 पाउंड का,
3: 1,000 पाउंड का एक मसाला है।
1: अच्छा,
3: आप अपने वालदेन के नाम पर اس کو اس کو لے لیجئے, اللہ آپ کو اس کا برا پورا اجر دے گا, آپ کے والدین کو ثواب پہنچے گا, جو آیات ہیں ان کو ان کے لیے بھی ایک بڑا تحفہ ہوگا, اور جو دنیا چھوڑ چکے ہیں اللہ کے ہاں حاضر ہو چکے ہیں ان کے لیے تو ایک بہت بڑی نعمت ہوگی, اللہ ان کے سامنے رکھے گا کہ آپ نے

0: come forward with for Madina Masjid inshallah. So amra asha korram bhai ebong bonira jara program shunra inshallah Madina Masjid e lagi inshallah inshallah apnara ekta share ekta musalla hafi musalla diye shori kokka inshallah ar na farle to at least 10 bricks or 100 pounds inshallah diye apnara shori
1: kokka ji mashallah ji badi tafseel se jo hawa shayad bhai ne apni zuban mein jo bangla ki zuban mein usme badi community yahan par maujood hai sirf community maujood hi nahi बड़ी बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है बंगला कमेटी ने हमारे मस्जिद के लिए जिस तरह शरीफ साहब ने बयान किया जी कि मस्जिद की सारी मसाजिद की तरह बड़ी खूबसूरती है कि हर कम्युनिटी के बैकग्राउंड के लोग यहाँ आते हैं और सिर्फ यहाँ नमाज ही नहीं बल्कि डिफरेंट जो है वो एक्टिविटीज़ हैं इस्लामिक एक्टिविटीज़ हैं जो है वो यंग जनरेशन जो यूथ के लिए हमारे प्रोग्राम होते हैं माशाल्लाह हाफिज़ साहब जो है वो एक दो फुटबॉल के मैच भी इन्होंने जीते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म से जो मस्जिद का प्लेटफॉर्म है तो आज जो है वो मेरे मुझे छोड़ के चार जो है यहाँ की लुटन के अपने अपनी कम्युनिटी के जो सरबराह मौजूद हैं तो मैं शरीफ साहब से मुझे स्टार्ट करूँगा शरीफ साहब आपके जो जितने जानने सुनने वाले हैं उनको जो अपनी तरीके से जो है वो अपील करें ताकि वो कम अज़ कम जो 100 pounds है उसको जो है वो डोनेट करें जी शरीफ साहब
2: जी
1: इस आपको जी आपने बंदे किया
2: तमाम दोस्तों
1: नहीं नहीं कोई गल है ना तो सारे बंदे आप इस बात आप इस बात अब मर्जी तो सॉरी अच्छा जी उर्दू में ठीक है
2: बारा जी प्लीज भाई आप आगे बढ़ें इस प्रोजेक्ट को आप तकवीद दें आप कंट्रीब्यूट करें ये एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है इस मस्जिद का और इसका नाम भी मदीना मस्जिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद के हवाले से इसका एक बड़ा रूहानी तल्लक है को मदीना मस्जिद जब नाम रखा गया तो सोच समझ कर रखा गया कि ये मस्जिद मस्जिद नबी की तरह इंशाल्लाह उसी तरह जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से उस मस्जिद की तामीर की तामीर फरमाई और हम समझते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस नाम पर भी हमसे इंशाल्लाह राजी होंगे और आगे इंशाल्लाह हमारे ये बातें काम आएंगी तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इस नाम की लाज रखते हुए इस नाम के लिए आप इस मस्जिद के साथ तआवुन करें ये एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद है बहुत अच्छे प्रोग्राम यहाँ होते हैं और अल्लाह के फजल से पढ़े लिखे लोग हैं इसमें इस कमेटी में इस पूरी तंजीम में पढ़े लिखे लोग हैं सारे तो इंशाल्लाह आप आगे बढ़ें कम अज़ कम 100 pounds मैं अपने खसूसी जो मेरे दोस्त मेरे तलक वाले हैं और मीरपुर कोटली वाले हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो आगे बढ़ें और ताकि कोटली का नाम जो है वो सामने आए मीरपुर का नाम सामने आए और पिंडी वाले भी ये हमारा ही इलाका है सारा पिंडी झेलम पटवार वाले आगे बढ़ें और हमारे साथ तआवुन करें ये आपकी मस्जिद है ये सब मुसलमानों की मस्जिद है तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप इसके साथ भरपूर तआवुन करें इंशाल्लाह आपका पैसा ज़ाया नहीं होगा एक एक पैनी का हम आपके साथ हिसाब करने के लिए तैयार हैं तो मैं दरख्वास्त करूँगा अपने दोस्तों से अपनी कम्युनिटी से कि वो आगे बढ़ें पाकिस्तानी कम्युनिटी और मुसलमान कम्युनिटी जितनी भी है यहाँ इस मस्जिद में सारी कम्युनिटी इन्वॉल्व हैं ये श्रीलंकन बांग्लादेश पाकिस्तान कश्मीर और लेबनान के भी लोग इजिप्ट के भी लोग इसमें शामिल हैं वो अपने प्रोग्राम भी मुख्तलिफ यहाँ करते रहते हैं तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप इसके साथ अमल करें
1: जी बहुत शुक्रिया माशाल्लाह शरीफ साहब के बाद जो है वो शरीफ साहब और इश्तियाक भाई की जो है वो बड़े यहाँ रिश्तेदार और बड़ी बरादरी यहाँ मौजूद है और मैं इश्तियाक भाई से दरख्वास्त करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह इश्तियाक भाई ने अपनी तरफ से हमेशा जो है वो तआवुन किया है और अल्लाह ताला आपके इस तआवुन को कबूल करे अल्लाह की राह में तो इश्तियाक भाई आप अपने जो रिलेटिव हैं अपने जानने वाले हैं आपका बड़ा अलकाब अहबाब है आप यूके आइए मदीना मस्जिद जो है कि जो अल्लाह का अल्लाह की मस्जिद का जो प्रोजेक्ट है उसका अपने जो है वो दिल से लोगों तक अपनी बात रखें बाकी अल्लाह पर छोड़ते हैं
3: बिल्कुल जी जो अल्लाह के घर हैं वो कभी भी बंद नहीं हो सकते
1: कभी सच्ची बात है
3: उनका काम कभी भी बंद नहीं हो सकता क्यों ना कोई अल्लाह पाक ऐसे असबाब पैदा कर देते हैं शायद कोई ऐसे दो चार ही आदमी मिल जाएं इसके पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दें ये अल्लाह जानता है अल्लाह का घर अल्लाह वाले ही करते हैं तो इंशाल्लाह
1: अभी काम जो है इश्तियाक भाई ने भी माशाल्लाह जी अपनी तरफ से डोनेशन किया अल्लाह ताला कबूल करे शरीफ साहब ने
3: भी मैं भी अपनी जो फैमिली है सबको बताऊंगा कि इस प्रोजेक्ट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी माशाल्लाह बहुत खूब जी इश्तियाक भाई जो है उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू रखी है कि जो अल्लाह के घर होते हैं उन्होंने बढ़ना ही होता है मैं खुद एक दिन किसी से बात कर रहा था जी कि मैंने आज दिन तक कोई ऐसी मस्जिद नहीं देखी जो कम्प्लीट ना हुई हो और ये होता है जी कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी तौफीक दी है आपने कितना हिस्सा डाला है तो मैं खुद तो नहीं दावा करता लेकिन सारे कह रहे हैं जी कि अकदस का बड़ा अलकाब आप लुटन में मौजूद है तो इस वक्त जो है वो मेरी जो लाइव ट्रांसमिशन है

0: इंस्पायर एफएम की वो मेरे जो पेज है, खास पेज अक्तस मुगल, उस पर जा रही है वो। मैं जहां वो मार्केटिंग नहीं कर रहा, मैं ये जो जो प्रोजेक्ट है उसके हवाले से कह रहा हूं कि इंशाल्लाह आप हमारे पास सिर्फ जो है वो 40 मिनट्स है, बल्कि 38 मिनट्स, इन 38 मिनट्स में कम अज़ कम जो है वो मुख़य्यर हज़रात आगे आएँ। देखें ये हमारे साथी सुबह 3 शाम 3 बजे से यहाँ पर मौजूद हैं। आज गर्मी जो टेम्परेचर है वो 35-36 तक जाता है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हम किसी पर एहसान कर रहे हैं या किसी की खातिर अल्लाह ताला ने हमारी जिम्मेदारी लगाई है तो वो अगर हमें 24/7 करनी पड़े तो ये भी फिर भी हमें हमारे लिए कम है। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं कर सकते जो उसने हमें नियमतें दी हैं, जिस जो उसने हमें आसाइशें दी हैं। तो बस ये है कि ये हमारी इससे में ये सआदत आई है कि इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है उसने बनना था और हमारी अल्लाह ताला ने जो हमें ज़िंदगी दी, अल्लाह ताला ने हमें जो है वो अब सब हमसे मुराद है आप सब लोग जिन्होंने इस जो बड़े प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया है। मकसूद भाई जो है वो हमेशा इसमें जो फ्रंट लाइन रहे हैं जी, और उसके अलावा कमेटी के सारे बंदे। जब एक रात हाफिज़ शाह साहब ने जो है वो जब मेरे ख्याल में रमज़ान शरीफ था तो इन्होंने जो है वो अपील शुरू की थी तो मैं थोड़ा सा मायूस था, मैंने कहा पता नहीं आज हमारा क्या बनेगा, लेकिन उस हमारी मेरे ख्याल से वो रिकॉर्ड किस्म की जो है वो पी रही है। तो ये आप सब लोगों ने तावन किया है। तो एक बार फिर जो मेरे ख़ास जानने वाले हैं, मेरे ख़ास जानने वाले में एक रिपीट करता चलो, मेरे पास यहाँ मौजूद है बैंक अकाउंट, बल्कि ये जो बैंक अकाउंट है ये सिर्फ मेरे जानने वाले के लिए नहीं है, ये पूरे लुटन के लिए। अभी शरीफ साहब ने जो अपने अलगाव बाप को तफसील बताई है, इश्तियाक भाई ने बताई है, ये डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र जो आप करने के लिए यूके इस्लामिक मिशन जो है वो नाम लिखना है, नीचे शॉर्ट कोड है 200609। अगेन आई एम रिपीटिंग, शॉर्ट कोड इज 200609, अकाउंट नंबर 3091637। ये अकाउंट नंबर है। एक बार फिर इसका मतलब ये नहीं कि 40 मिनट्स के बाद जो है ये जो है वो इश्तियाक भाई भी जो है वो अकाउंट नंबर रिपीट करना चाहते हैं कि जो इनके जानने वाले हैं वो इनकी आवाज़ सुनकर जो है वो मनी ट्रांसफ़र करें। जी इश्तियाक भाई
1: जी, ये
0: थोड़ा जोर से बोले प्लीज़।
1: डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र यूके इस्लामिक मिशन बार्कलेज बैंक PLC, शॉर्ट कोड है 200609, शॉर्ट कोड 200609, अकाउंट नंबर है 3091637।
0: माशाल्लाह जी, अभी इन्होंने जो है वो जो अल्फाज होते हैं ना, अल्लाह ताला दिलों के भेद खूब जानता है, अल्फाज बड़ी वैल्यू रखते हैं। देखें कि इनका इखलास है कि मैं रिपीट कर रहा था तो इन्होंने सोचा कि मैं खुद रिपीट करूं और मेरी आवाज़ से जो है सुनने वाले अगर उसमें जो है वो डोनेशन देंगे, अल्लाह की राह में देंगे, तो ये एक भी बड़ी सआदत होती है। एक बार फिर जो है वो हम जो है वो बंगला कम्युनिटी की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारे पास मिनट कम है, उसके बाद जो है मकसूबा की तरफ।
1: आज छुट्टी का दिन भी है, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं
0: आज छुट्टी का दिन है, सारे मौजूद हैं
1: लोग, छुट्टी के दिनों में शायद लोग इतने ज़्यादा ना सुन पा रहे हों, इंस्पायर रेडियो पर लाइव ना हों, तो ये
0: इसका मतलब ये नहीं कि ये 40 मिनट को बंद कर दें।
2: जी जी इंशाल्लाह यही इंशाल्लाह कंप्लीट करेगी।
1: जी जी, अगर ये प्रोग्राम दोबारा रिपीट हो जाए तो लोगों की आगाही के लिए ड्यूरिंग द वीक किसी टाइम एक घंटे के लिए या
2: तो इंशाल्लाह यही कमेटी इस मस्जिद को कंप्लीट करेगी, आगे बढ़ेंगे। मैं अपने चाहने वाले अपने दोस्त अहबाब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तावन करें, ये अकाउंट नंबर आपको मिल गया है, अगर अकाउंट नंबर में ना डालें तो आप मेरे हाथ में दे सकते हैं।
0: जो इमरान यहाँ मौजूद है, बीच जो पोस्ट ऑफिस है,
2: हम जॉब दे हैं तो इंशाल्लाह इसको हमने कंप्लीट करना है।
0: और हमारे ने एक स्ट्रीट कलेक्शन भी रखी हुई है बड़ी पार्क में, जो है वो हमारे कलेक्शन पॉइंट है। वो कौन
2: सा कल हम रहे हैं,
3: हर सैटरडे संडे हम होते
0: हैं, एवरी सैटरडे संडे,
2: कल भी हो रहा है ना,
3: कल होना था, बहुत गर्मियां और लोग रोजा रखेंगे,
2: बड़ी पार्क में भी कलेक्शन करते हैं। हमें लाइसेंस मिल गया है,
3: मोस्ट ऑफ वीकेंड इंशाल्लाह फ्रॉम नाउ ऑन, इंशाल्लाह
0: वीकेंड अभी नेक्स्ट कब आ रहा
3: है, स्टार्टेड लास्ट मंथ, एवरी वीकेंड इंशाल्लाह,
2: एवरी वीकेंड इंशाल्लाह, वीकेंड
0: उसके जो इंचार्ज है वो शायद साहब है, माशाल्लाह
2: बार्कले बैंक के सामने इंशाल्लाह हमारा वहां
3: स्टेशन
2: होता है, उसमें भी आप आपके आगे आप उसमें हिस्सा डाल सकते हैं
3: इंशाल्लाह। মাত্র দুই দিন রয়েছে বাকি, দুই দিনের মাঝে আপনারা ইনশাল্লাহ আজকেও দিতে পারবা, কালকেও দিতে পারবা, লাস্ট মিনিট কল ইনশাল্লাহ। সো আমরা লেট করা উচিত নয়, যারা এখনো কুরবানি দিয়েছেন আমরা ইমিডিয়েটলি আমরা পাকিস্তান, নেপাল, ইন্ডিয়া, শ্রীলঙ্কা, আজাদ কাশ্মীর, যে কোনো দেশে আপনারা দিতে পারবো ইনশাল্লাহ। আর এছাড়াও ঈদ গিফট হিসাবে আমরা দিতে পারবো কুকড মিল, যদি আমরা দিতাম চাই রোহিঙ্গা গাজাত ইয়ামান আফ্রিকাতে, আমরা মেনি প্রজেক্ট আছে আপনারা দিতে পারবো ইনশাল্লাহ। আপনারা ডোনেশন হটলাইনে কল করো 0703872157 এই নম্বরে, ইনশাল্লাহ উই আর হিয়ার টু রিসিভ ইউর কল ইনশাল্লাহ, অ্যান্ড ইউ ক্যান কল দ্য স্টুডিও নম্বর এজ ওয়েল। সো ইনশাল্লাহ ইফ ইউ ওয়ান্ট টু টক টু আস ইনশাল্লাহ ইউ ক্যান টক টু আস অলসো, অ্যান্ড দিস ইজ এন ওপেন আপিল ফর মদিনা মসজিদ অক্টোবর প্রজেক্ট ইনশাল্লাহ, ইজ এ লং প্রজেক্ট স্টার্টেড লাস্ট জানুয়ারি ইনশাল্লাহ, উই আর এক্সপেক্টিং এভরি ওয়ান টু টেক পার্ট ইন দিস প্রজেক্ট ইনশাল্লাহ।
4: উই উইল সি ইউ আফটার দ্য ব্রেক ইনশাল্লাহ।
5: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Asr.
6: Luton aur iske mazafat mein namaz asr ka waqt hua chahta hai.
7: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.

0: ये जो अपील प्रोजेक्ट है जो अभी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया उनके लिए बताते चलें कि ये जो अपील प्रोजेक्ट है इसमें दो तीन जो है वो अपीलें शामिल थी। पहली तो ये थी कि जो सबसे बड़ा है कि जो हमारा 1.8 मिलियन अराउंड जो एस्टिमेटेड जो है वो प्रोजेक्ट है मस्जिद का, ये तीन मंजिला मस्जिद है, इसमें बेसमेंट भी प्रॉपर जो है वो एक हाल है और इसमें जो है वो ग्राउंड फ्लोर जो है वो मेहराब से लेकर नीचे पार्किंग तक जो है बहुत बड़ी, ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से लंबाई में हाल होगा वो, उसके ऊपर जो तीसरा मंजिल है उसमें भी और वाद मस्जिद होगी जिसमें तीन जो फ्लोर है उनमें जो है वो वहाँ पर वजू की सहूलत मौजूद होगी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद थे, गुज़श्ता कई बार हमने यहाँ से अपील की है, बड़ी पार्क में हम लोग अपील करते रहते हैं, मस्जिद में हमारी अपील होगी और इंशाअल्लाह जो है वो एक बार। और दूसरा इसके साथ जो हमारी जो कुर्बानी है, कुर्बानी की जो डिफरेंट कंट्रीज़ में 25 कंट्रीज़ में मेरे ख्याल में जो है हमारे जो कुर्बानी प्रोजेक्ट हैं वो चल रहे हैं, उसमें कोशिश करें कि आप ईद से पहले पहले जो है वो अपना जो शेयर है वो उसमें शामिल करें। उसके अलावा हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं जिनमें जो है वो सदका के तौर पर जो 10 पाउंड का है, 25 पाउंड का है, वही रिपीट कर दिया हम लोगों ने। और इसका जो है वो यंग जनरेशन है, आप जब भी इसको रिपीट करना चाहें, सुनना चाहें, डायरेक्ट जो आप फेसबुक पर इंस्पायर की जो FM के जो फेसबुक पर जाके इसको दोबारा रिप्ले करें तो एक एक जो हमारा वर्ड है, एक एक हमारी जो आवाज़ है वो आप दोबारा सुन सकेंगे, क्योंकि लाइव प्रोग्राम है उसमें अल्फाज ऊपर नीचे हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, हम सब का जो है वो मकसद यही था कि अल्लाह की खातर बैठना, अल्लाह की खातर जो है वो खैरात सदका खैरात और जो मस्जिद की डोनेशन है वो इकट्ठी करनी होती थी। इसमें ये होता है कि लाइव में जो है कोई अल्फाज इधर उधर हो जाते हैं तो हम आपसे दिली माजरत चाहते हैं अगर किसी किस्म का कोई ऐसा लफ्ज़ हमसे जो है वो दानिश्ता निकल गया हो। तो जो लास्ट मिनट्स में क्लोजिंग के लिए मकसूद भाई को फिर दोबारा जो है वो हमारे इंचार्ज हैं ज़ाहिर है तो उनको देता हूँ। जी मकसूद भाई,
1: अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक वी रेज्ड ओवर 4,576 पाउंड्स अल्हम्दुलिल्लाह फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर वोटर प्रोजेक्ट्स, फॉर कुर्बानी, फॉर फूड पैक्स इन व्हाट यू कॉल इट गाज़ा एज़ वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। No, no, those are separate. So those are separate, inshallah. But alhamdulillah, I'm going to ask Hafiz Saab to make dua for all those brothers and sisters that have contributed, inshallah. May Allah ta'ala accept their, what you call it, contributions. And please do not forget Medina Masjid. Alhamdulillah, as I said, it's one of the most active masjids in Luton. Alhamdulillah, it's doing great work. And we need your help, inshallah, to continue with this project. Contribute at the Beach Hill Post Office. You can, Saturday, Sunday, we have in Berry Park, we have also trying to raise money. Fridays, you can be at Crescent Hall as well. The Jummah starts at, 1 o'clock. Jamaat is 1:30, inshallah. So again, you can make your contributions there as well, inshallah. Or any of our brothers that you know, Sharif Sahab, Akhdas Bhai, Hafiz Sahab, Star Bhai, anybody that you know, you can give the money to them, inshallah. We've got full trust in them, inshallah, and the money will be deposited into our accounts, inshallah. And may Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala reward you all, and Allah asks Hafiz up to make dua.
2: Finally, I would like to remind everyone to say takbirat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahi alhamdulillah. This is the best zikir we can do in these days, abundantly, at home, at your business, wherever you are, you can recite this takbirat loudly, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahi alhamdulillah. Finally, I would like to ask Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, grant us Jannatul Firdaus, those who have donated, alhamdulillah, those who have donated, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, accept their donation, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, forgive those brothers and sisters, those who have donated and taken part, Allah subhanahu wa ta'ala, forgive them all, forgive their parents, and remove their difficulties from their life, inshallah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, may Allah subhanahu wa ta'ala grant Jannatul Firdaus to their parents and relatives who passed away, inshallah. And may Allah subhanahu wa ta'ala give us ability, tawfiq, to stand for those people who are oppressed, those people who are in need as long as we live. Alhamdulillah. Mm-hmm. May Allah subhanahu wa ta'ala accept those who are in Hajj. Inshallah, grant us tawfiq to go to Hajj again and again, inshallah. So, my dear brothers and sisters, inshallah, with this, inshallah, we conclude our program. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammad.

0: अब अगली बात हम करेंगे एहतिना में हिदायत और इल्म का फर्क। देखें, अगर मैं आपको कहूं कि कोई आपसे पूछे ये आज का प्रोग्राम कहाँ हो रहा है और कहे वो उधर वो एक सेंटर है वहाँ पर हो रहा है रवात में, और वो आपको यहाँ पहुँचने की हिदायत देते हैं, उसको भी हिदायत ही कहते हैं ना। आपने वो हिदायत लिख ली, लेकिन अगर मैं कहूँ कि उसने आपको यहाँ पहुँचने का इल्म दिया, मालूमात दी, वो भी बात ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में हिदायत और मालूमात एक ही बात है। आप मुझे हिदायत दें मैं कौन सा कोर्स लूँ, प्रोफेसर से पूछा जाके, मैं कौन सी किताब पढ़ूँ, और जब आपको वो हिदायत देगा वो मालूमात ही दे रहे हैं ना। तो बहुत सारी मिसालों में हिदायत और इल्म में कोई फ़र्क नहीं होता, एक ही बात होती है। किसी को हिदायत देना और किसी को इल्म देना एक ही बात होती है। लेकिन कुरान ने हिदायत और इल्म में एक तरफ तो एक ही बात, एक पहलू से एक ही बात है, और एक और पहलू से दो कम्प्लीटली पूरी तरह से मुख्तलिफ बातें हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं। जैसे बनू इसराइल के उलमा, उनके बारे में कुरान ने कहा है कि ये इल्म वाले लोग हैं, इल्म बहुत है उनके पास। क्या नहीं है? हिदायत नहीं है। अगर इल्म और हिदायत एक ही चीज है, तो अगर उनके पास इल्म बहुत है तो इसका मतलब है उनके पास क्या बहुत है? हिदायत बहुत है। इबलीस के पास बहुत इल्म है, बहुत इल्म है। उसके पास सारे अंबिया का इल्म, बल्कि उन अंबिया का भी इल्म जिनको हम नहीं जानते, उनकी कौमों को भी बर्बाद करने पहुंच गया था। उसको हम किस्सा आदम पढ़ते हैं, वो किस्सा आदम में खुद था, उसको फर्स्ट हैंड नॉलेज है, बराह रास्त इल्म है उसको। हम मलाइका के बारे में सीखते हैं, वो अब मलाइका से उसकी मुलाकात हो चुकी है, उनके साथ में वो रह चुका है, यानी उसके इल्म में कोई कमी नहीं है। किस चीज़ में कमी है? हिदायत पर। तो एक पहलू से तो हिदायत और इल्म एक ही चीज़ है, एक और पहलू से हिदायत और इल्म दो अलग अलग मुख्तलिफ कम्प्लीटली अलग चीज़ें हैं। दूसरी बात, अगर मैं आपसे इल्म मांगो, मुझे ये बता दें, मुझे ये बता दें, मालूमात मांगो, इल्म मांगो, एक दफ़ा आपने वो इल्म हासिल कर लिया तो वो आपका हो गया। आप इल्म को ओन कर सकते हो। आपने सीख लिया एक दफ़ा, दो और दो जमा चार इल्म है ना। अब आपको दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब आप उससे मज़ीद और इल्म सीखें और मज़ीद सीख लेंगे, उसके बाद मज़ीद और फिर मज़ीद और मज़ीद और। इसी को तालीम कहा जाता है। पहली जमात में जो सीखा उसकी बुनियाद पर दूसरी में मज़ीद सीखा, दूसरी में पहली वाली बात नहीं हो रही, दूसरी वाली बात हो रही है, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, PhD तक पहुँच गए। जब PhD में पहुँचे तो बैचलर्स वाली बात नहीं हो रही, आगे बात हो रही है। इल्म के मराहल से जब इंसान गुजरता है ना, तो पीछे नहीं जाता, हमेशा आगे जाता है। जिसके पास ज़्यादा इल्म है, वो आप उसके सामने एक नई दुनिया खुल गई, अब वो उसके बारे में सीखना चाह रहा है। वो एक दफ़ा वो दरिया वो पार कर ले, उसके सामने एक और दरिया आ जाता है, अब वो उसको पार कर रहा है। यही बात है ना। तो इल्म में क्या होता है? तरक्की। इल्म में हमेशा होती है तरक्की। लेकिन हिदायत में ना कभी ऊंचा, कभी ऊंच, कभी नीच, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी आगे, कभी पीछे। इसीलिए वो हिदायत ऐसी चीज है, पहली तो आप उसको ओन नहीं कर सकते। आप इल्म को किसी हद तक ओन कर सकते हो, मेरा है ये इल्म, मुझे इल्म है इसका। आप ज़बान सीख सकते हो, आपने ज़बान सीख ली, आप उसको ओन करते हो, अब आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, आपकी एक ओनरशिप है उसके ऊपर। लेकिन कुरान जिस चीज़ को हिदायत कह रहा है ना, वो इल्म से कहीं ज़्यादा है, कोई और ही चीज़ है जिसको आप कभी ओन नहीं कर सकते। और क्योंकि आप उसको ओन नहीं कर सकते और आपको उसकी ज़रूरत है, तो आपको वो बार बार मांगनी पड़ती है, और एक दफ़ा आपको दे दी जाए तो वो आपके पास हमेशा के लिए नहीं रहती। इल्म की तरह, इल्म आपको एक दफ़ा दे दिया जाए ना, आपके पास ही रहता है। इल्म एक दफ़ा मिल जाए तो रहता है, अगर आपको, खासकर आपको उसमें दिलचस्पी हो और आपने ठीक तरीके से सीख लिया हो, तो वो आपके पास ही रहेगा। इल्म सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगा। वो इल्म, किसी ने एक दफ़ा ऑयल चेंज करना सीख लिया या घर का दरवाज़ा फिक्स करना सीख लिया, अब उसको पता है, उसको बार बार सीखने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास वो इल्म है। लेकिन अल्लाह ताला ने इस सूरत में जो हमसे मुतालबा करने को का सिखाया है ना, एहदिना हिदायत दीजिए। हम कितनी दफा मांगते हैं, कम से कम दिन में अगर 5 वक्त का नमाजी है और सिर्फ फर्ज नमाज अदा कर रहा है, सिर्फ फर्ज 17 मरतबा हिदायत का मुतालबा कर रहा है। और ये मुतालबा हम सिर्फ अल्लाह ताला से ही नहीं कर रहे, बल्कि हम ये सुन्नत पूरी कर रहे हैं, और ये सुन्नत है हमारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज, और वो हमसे कहीं ज़्यादा नमाज पढ़ते थे, यानी हमसे कहीं ज़्यादा मरतबा अल्लाह के रसूल अल्लाह से क्या मांग रहे हैं, हिदायत। इंसानियत का हादी, इंसानियत को हिदायत देने वाला इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से बेशुमार मरतबा हर रोज़ क्या मांग रहा है, हिदायत। इल्म तो है उनके पास, और मैं तो ये भी कहूँगा कि हिदायत भी उन्हीं के पास है, लेकिन फिर भी वो हिदायत क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं। इसकी मिसाल मैं आपको मिसाल के ज़रिए से समझाता हूँ। कुरान ने, कुरान की अपने, कुरान को भी हिदायत ही कहा है, हुदा कहा है, और कुरान ने कुरान की मिसाल समझाने के लिए पानी की मिसाल दी है। तो कुरान का नाजिल होना बारिश के नाजिल होने से उसकी तशबीह की गई है कुरान के अंदर। पानी के बारे में सोचते हैं, प्यास लगती है, इंसान क्या करता है, पानी पीता है। एक दफ़ा पानी पी चुका तो ये नहीं कहता चलो पानी का तकाजा तो पूरा हो गया, अब किसी और चीज़ की तरफ ज़िंदगी, नहीं नहीं नहीं 2-3 घंटे बाद क्या होना है, फिर जिस्म खाली होना शुरू हो गया पानी से, दोबारा पानी, फिर 2-3 घंटे बाद दोबारा पानी, फिर दोबारा पानी, फिर दोबारा पानी। आप अपने जिस्म को बरकरार नहीं रख सकते, ज़िंदगी बरकरार नहीं रह सकती बगैर पानी के। इसी तरह मेरी रूहानी ज़िंदगी बरकरार नहीं रह सकती बार बार क्या चीज़ देने से, हिदायत। एहतिना। इल्म रहेगा, और पता है इल्म किसी के पास बहुत ज़्यादा भी हो जाए ना, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास हिदायत है। मुझे जितनी हिदायत की ज़रूरत है उतनी आपको है। आप मुझसे, आप में से कई मुझसे कहीं ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं, आप में से कई कम हैं, लेकिन हिदायत का मुतालबा हम सबका एक ही जैसा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। उसमें आपकी डिग्री से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने कुरान हिफ्स कर लिया है। कुरान का हिफ्स करना इल्म है या हिदायत है, इल्म है। इल्म के ज़्यादा होने से हिदायत की गारंटी नहीं मिलती। हिदायत का रास्ता आसान होता है, उसमें कोई शक नहीं, अब आपके पास वो मालूमात हैं जिनके ज़रिए से आप हिदायत ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास असल में हिदायत है। आपके पास मालूमात हैं, मालूमात हैं, हिदायत और चीज़ है। हिदायत मांगनी पड़ती है, हिदायत कभी आप ओन नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये कभी नहीं कह सकता अल्लाह का शुक्र है पिछले साल अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी, अब मेरी दुआ है कि बाकी फैमिली को भी हिदायत दे दे, क्योंकि मुझे तो देती अब मेरी जेब में है, इन बेचारों को भी मिल जाए तो इनका भी भला हो जाए। मेरे जहन में कभी आएगा नहीं कि मैं अब हिदायत के स्कूल से ग्रेजुएट हो सका, हो चुका, मेरी हिदायत की डिग्री है, बाकी बेचारे मिस्कीन अब इनको देने की ज़रूरत है। ये जहनीत आएगी नहीं मेरे दिमाग में कभी, क्योंकि हर नमाज में मैं इस बात को अपने आप को याद दिलाता हूँ कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, सबसे पहले हिदायत की। अच्छा, नमाजें हमारी कम अज़ कम 5 हैं, कुछ कुछ घंटों के वक्फे से क्या सिखाया जा रहा है इस, और नमाज की असल क्या है। यहाँ तक के हदीस कुदसी में फातिहा को सलात कहा गया है, फातिहा को ही नमाज कहा गया है, और इस जो नमाज की बुनियाद है वो फातिहा है। और इस फातिहा में जब मैं अल्लाह ताला से हिदायत मांग रहा हूँ, पता है इसका, उसके मकासद में से एक मकसद क्या है, या अल्लाह ये जोहर की नमाज होने लगी है, जोहर और असर के दरमियान मेरे सामने बहुत सारे फैसले करने को होंगे, छोटे और बड़े, इधर देखूं या इधर ना देखूं, ये कहूं या ये ना कहूं, ये जवाब मैसेज में भेजूं या ना भेजूं, इस तरह से इस डील को हाँ करूं या ना करूं, यू नो, इसके बारे में किसी से और बात करूं या ना करूं, फैसले करने होते हैं ना ये हर लम्हे में, और उस हर फैसले के लिए या अल्लाह मुझे क्या दे, हिदायत दे। और फिर ये जो जज्बा होता है हिदायत तलब करने का, वो कुछ घंटों में वो सूख जाता है, और फिर नमाज का टाइम आया, फिर क्या पूछा, हिदायत दे दे मेरे रब, अब मगरिब तक जो फैसले करने हैं उनमें हिदायत होगी, उम्मीद है कि हिदायत होगी अगर दिल से मांगी है तो। फिर एक और इसके साथ एक और बात याद आ गई, मांगने मांगने में फर्क होता है नहीं। अगर कोई आपसे कहे पानी ला दे और आप भूल गए, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने मांगा तो था लेकिन कोई इतनी डेस्परेट सिचुएशन नहीं थी। और कोई आ रहा है बहुत रास्ता किया पानी दे दे प्लीज प्लीज पानी, लेकिन फिर आप मौसम पे बहस नहीं करोगे, आप अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा मैं भी लेके आता हूँ। जिस तरीके से इंसान मांगता है ना, उससे पता चल जाता है उसको किसकी कितनी ज़रूरत है। अगर हम अल्लाह ताला के सामने नमाज में खड़े हैं और कह रहे हैं इन सराल मुस्तकीम, वरना वो रहमत हो ही नहीं सकती। ये भी है इसके अंदर जिन अल्फाज में अल्लाह ने कहा है इहदिनस सिरात मुस्तकीम। अच्छा, आप अरबी में मुख्तलिफ असालीब मुमकिन है, आप ये भी कह सकते हैं इहदिना इलस सिरात, ये भी कह सकते हैं इहदिना अलस सिरात, ये भी कह सकते हैं इहदिना लिस सिरात, और ये भी कह सकते हैं इहदिनस सिरात जैसे फातिहा में है। यानी मुख्तलिफ हरूफ इस्तेमाल हो सकते हैं, हर एक हर्फ का अपना मकसद है। मैं आपको इसका थोड़ा सा मुख्तसर तरीके से इनका फ़र्क समझा देता हूँ। इहदिना इलस सिरात है, अगर मैं कहूँ मुझे नहीं पता कि जो हस्पताल है वो किधर है, तो आप कहें यहाँ से सीधा जाएं, फिर राइट टर्न लें, फिर लेफ्ट टर्न लें, फिर 5 किलोमीटर जाएं, अस्पताल आ जाएगा। यह है इला, उसकी तरफ हिदायत देना। एक डेस्टिनेशन है, एक आपकी मंजिल है, उस मंजिल की तरफ किसी को हिदायत दी जाए ना, उसके लिए इला का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो कुरान ने जब जन्नत की तरफ पहुंचने का रास्ता समझा दिया ना, वो इला है, यहदीहिम इला तरीक मुस्तकीम। ये इला भी इस्तेमाल हुआ है कुरान में, ठीक है ना। तो इला से मुराद होगी मालूमात। जब इला आएगा ना, तो वो कौन सी मालूमात हैं जो मुझे अपनी मंजिल तक ले जाएंगी। दूसरा लफ्ज़ है अला सिरात, इहदिना अला सिरात। अला सिरात मुराद है मैं रस्ते में हूँ और रस्ते में कुछ रुकावटें आ रही हैं, और रस्ते में चलते हुए जो रुकावटें हैं उनको मैं कैसे, उनसे मैं कैसे गुजरूं फंसे बगैर या गुमराह हुए बगैर। यानी रस्ते पर चलते हुए क्या क्या हिदायत मुझे फॉलो करनी पड़ेंगी। जैसे कहें हाँ वो हस्पताल तो 5 मील दूर है, लेकिन रस्ते में एक रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो ज़रा आप लेफ्ट पे रह जाना, या फलाना एक आएगा वो ये इशारा आएगा उस पर ज़रा साइड से गुजर जाना। ये क्या है इहदिना अला अस्सिरात, इहदिना अला अस्सिरात, ये दूसरा है। तीसरा क्या है इहदिना लिस्सिरात, इहदिना लिस्सिरात। लाम इस्तेमाल होता है, लाम हर्फुल गाया इसको अरबी में कहते हैं, आखिर तक पहुंचाने के लिए। यानी मैं किसी से कहूँ कि सर आपने हस्पताल की डायरेक्शंस तो बहुत अच्छी दे दी, मेहरबानी करके आप मेरे साथ अगर गाड़ी में बैठ जाए ना और मुझे वहाँ तक पहुँचा दें, अब मुझे वहाँ तक पहुँचा दें, या आप मेरे साथ फ़ोन पर रहें जब तक मैं पहुँच नहीं जाता। तो क्या किया, जो इंसान आपके साथ सारा रास्ता रहे जब तक आप मंजिल तक पहुँच ना जाए, उसने क्या किया इहदिना लिस्सिरात, हमें आखिरी मंजिल तक पहुँचने तक हमारे साथ, हमें गाइड करते रहें, हमारे साथ ही रहें। हम कुरान में कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। जन्नत के बारे में कहा जाता है जन्नत में पहुंचने के बाद अहले ईमान कहेंगे अल्लाह हमें उन सब में से बनाए, वो हम कहेंगे अल्लाह ताला के लिए हमद है जिसने हमें यहाँ तक हिदायत दी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना ली हाज़ा। लाम इस्तेमाल हुआ है, क्यों, क्योंकि इशारा इस बात की तरफ किया जा रहा है अल्लाह ताला हमारे साथ पूरा रास्ता था यहाँ तक पहुँचाए, यहाँ पहुँचाने तक, यह है ली। अच्छा, फातिहा में ना इहदिना इलस सिरातिल मुस्तकीम है, ना इहदिना अलस सिरातिल मुस्तकीम है, ना इहदिना लिस सिरातिल मुस्तकीम है, बल्कि कोई हर्फ है ही नहीं, सीधा सीधा है क्या इहदिना अस सिरातिल मुस्तकीम, बगैर हर्फ के। तो क्या मायने हुए, इसको कहा जाता है अलउमूम अलिश्माल, यानी तमाम हर्फ शामिल हैं, इनमें से अगर एक हर्फ भी इस्तेमाल किया होता ना तो बाकियों का हक अदा ना होता। सुबहानअल्लाह, क्या मालूमात चाहिए जन्नत तक पहुंचने के लिए, इहदिनस सिरात शामिल है। रस्ते में क्या क्या रुकावटें आएंगी, उनको कैसे समझा जाए, इहदिना अला सिराज शामिल है। अल्लाह ताला हमारे साथ सारा रास्ता हमारे साथ रहेगा, हुआ माकुम ऐनमा कुंतु, उसकी मैयत उसकी सोबत हमारे साथ रहेगी, इहदिना लिस सिराज, और वो सब शामिल करके एक ताबीर में इहदिना सिराज। सुभान अल्लाह, इहदिना सिरातुल मुस्तकीम। अब ये अस्सिरात के बारे में कुछ, इहदिना और अस्सिरात के ताल्लुक के बारे में कुछ बात थी। अब आगे मुख्तसर बात करते हैं सिरात के लिए, रास्ते के लिए, सही रास्ता या सीधा रास्ता तर्जुमा होगा ना उर्दू में अस्सिरात अल मुस्तकीम का। सिरात के लिए अरबी में मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, सबील का लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल हुआ है, तरीक इस्तेमाल हुआ है और सिरात भी इस्तेमाल हुआ है, तो इनका थोड़ा सा फ़र्क समझ लेते हैं। तरीक असल में तरक़ा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है किसी दस्तक देने पे, तरक अलबाब, दरवाजे पर दस्तक दी।
1: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Isha.
2: Luton aur iske mazafat mein namaz-e-Isha ka waqt hua chahta hai.
3: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.

0: Ajad.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: हजार मील आगे हैं, आपको कुछ लोग अपने से आगे नजर आ रहे हैं, कुछ लोग अपने से पीछे नजर आ रहे हैं, कुछ लोग आपसे कई सालों पहले इस पूरे रास्ते से गुजर चुके, आगे आखिर तक पहुंच चुके, आप पीछे रह गए हो, लेकिन मकसद बस एक ही है। ये नहीं कहा या अल्लाह हमें इस रोड पर सबसे तेज गाड़ी दे दे, इस रोड पर हमें सबसे तेज चला दे। एक बात मांगी है, हिदायत दे दे कि जिस भी रास्ते से हम शुरू हुए हो इस सड़क तक हमें पहुंचा दे। बस एक दफा इस सड़क पर आ गए, जिस रफ्तार से चलना होगा या जिसके साथ चलना होगा उसकी फिक्र हमें कम है। कम अज कम क्या है कि हम इस सड़क पर हैं। अब इस सड़क पर आने के बाद कोई हाफ़िज़े कुरान है जिसको अरबी भी आती है, तजवीद भी आती है, आलिम भी है, इस सड़क पर आने के बाद कोई 55 साल ईसाई था, कल मुसलमान हो गया, अब वो इस सड़क पर, वो पीछे उसको अलिफ बा भी नहीं पता, उसको नमाज भी ठीक से भी पढ़ी नहीं, इंग्लिश में नमाज पढ़ रहा है, ठीक है ना। इस सड़क पे कोई 90 साल का है, इस सड़क पे कोई 12 साल का है, हर एक की स्पीड मुख्तलिफ, हर एक का लेवल मुख्तलिफ, हर एक का इल्म मुख्तलिफ, हर एक की शुरुआत मुख्तलिफ, कोई किसी सड़क से शुरू हुआ था, कोई किसी सड़क से, किसी का कोई बैकग्राउंड, किसी का कोई बैकग्राउंड, किसी की कोई मुश्किल, किसी की कोई मुश्किल, कोई इस सड़क पे दो लोग इकट्ठे शुरू हुए और एक बहुत जल्दी आगे निकल गया और एक आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, कोई बात नहीं, किसी के साथ कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस दुआ में हमने मंजिल की तलब नहीं की, सड़क की तलब की है। अजीब दुआ है, हिदायत मांगी जाती है मंजिल के लिए, हिदायत सड़क के लिए नहीं मांगी जाती है। आप मुझे बता दें सड़क पे कैसे पहुंचूं, आपका मकसद क्या है, बस सड़क, नहीं सड़क से कहां जाएंगे, बस आप सड़क पे पहुंचा दें, बाकी मुझे कोई फिक्र नहीं। एक ऐसी बात कर रहे हो, कभी भी नहीं होता कि आपकी असल गायत, आपका असल मकसद सड़क हो, आपका असल मकसद होता है सड़क कहाँ लेके जा रही है। लेकिन इस सूरत में हमें किस चीज, हमने क्या मांगा है? अगर मांगना होता, अगर हम कहें असल मकसद मेरा जन्नत है या अल्लाह से मुलाकात है, या अल्लाह मुझे वो रास्ता दिखा जो तुझ तक पहुँचा दे, या मुझे अपने तक पहुँचने का रास्ता बता दे, ये भी अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए। हिदायत किस चीज की है? हिदायत मुझे किसी तरह इस सड़क तक पहुंचा दे, बस। अजीब बात है। इससे हमें क्या सीखना है? हमें सीखना यह है कि इस्लाम में, इस दुनिया में, इस जिंदगी में मुझे अंजाम से दिलचस्पी कम है, सफर से दिलचस्पी ज्यादा है। मैं अगर 2 कदम चला इस सफर में और मेरी मौत हो गई, कामयाब हो, अगर मैं 1,000 कदम चला और मौत आ गई, कामयाब हो, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं मैं कितना चला, बस इतना है कि मैं इस सड़क पर था और इस सड़क पर मैं चल रहा था। अब एक अगर ये बात समझ आ गई ना, तो मुझे किसी और से अपने आप को कंपेयर करने की दिलचस्पी नहीं रही, ये तो मुझसे आगे निकल गए, ये तो मुझसे पीछे हैं, इनको भी ना ना ना ना, ना हर एक का अपना पेस है, हर एक की अपनी स्पीड है, बहुत कुछ आदगी है इस रोड में भाई, आप किसी के पीछे नहीं फंसे हुए। कुछ लोग आपके साथ चल सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, वो करते हैं सपोर्ट आपको, आप एक दूसरे को जो रास्ते में जो ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं उनका आप सामना कर सकते हो। साइड पे और रोड्स हैं, उन पे बड़े प्यारे प्यारे साइंस लगे हुए, थोड़ा सा लेफ्ट टर्न ले लो, इधर भी आ जाओ थोड़ी देर, हमारे साथ भी थोड़ा टाइम गुजार लो, और आपका दोस्त आपको खींचेगा, नहीं नहीं नहीं चलते रहो, नहीं यार बहुत थके, एग्जिट तो ले दो यार, थोड़ा सा इस वीकेंड एग्जिट ले लें, उसके बाद तक उन बादी ही कौमन सालिहीन, उसके बाद अच्छे हो जाएंगे ना, चलते रहो साथ, जो साथ होगा ना वो आपको सपोर्ट करेगा, आपको सीधा चलाता चला जाएगा। ये बहुत खूबसूरत हिदायत है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में, लेकिन इसमें सिर्फ बस एक चीज रह गई और वो ये है कि
3: सब्सक्राइब नाउ टू द बेगिना यूट्यूब चैनल टू वॉच द रेस्ट ऑफ दिस सीरीज एंड मोर ग्रेट कंटेंट फ्रॉम उस्ताद नुमान अली खान। Coming up next time on Akhri Mojza.
2: जिस तरह ना आप अगर ऐनक सनग्लासेस पहनते हो, उसका लाल रंग का शेड हो तो सारी चीज़ें लाल नज़र आती हैं, ब्लू हो तो सारी ब्लू नज़र आती हैं, कुरान हो तो सारी चीज़ें कुरान के लेंस से नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, आपका एक व्यू बदल जाता है। और यही एक بنیادی مقصد ہے قرآن کا کہ اگر وہ نظر آنا شروع ہو جائے تو سیدھا راستہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, اور جو غلط راستے ہیں وہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں دور سے ہی. اہدنا الصراط المستقیم.
0: The Nasheed Show. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
4: Hi, I'm Greg, and I'm a filmmaker and campaigner, and I've been with Shemiza on Inspire FM.
5: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
6: Did you see that guy on TV?
7: What, that No Comment guy?
6: Yeah, he was sick. What was his name?
7: I think it was Atiq Malik.
6: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
8: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
6: Liberty Law, there when you need us most.
9: The Inspire Eid Festival is back. Join tens of thousands this Eid al-Adha at Stockwood Park, Luton, on the 27th and 28th of May from 1 p.m. to 9 p.m. for the UK's biggest and most affordable Eid festival. Enjoy funfair rides for just £1 to £2, amazing world food stalls, desserts and sweet treats, games and activities for the whole family, shopping stalls, festival vibes and so much more. Best of all, entry is absolutely free, with free on-site parking and free entry too. Bring your family and celebrate Eid together at Inspire Eid 2026, where the community comes together to celebrate. Find out more now at inspireeid.org, subject to moon sighting.
10: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
11: Your sacrifice, a gift of hope. As Eid approaches, think of those who cannot celebrate. Families without food, without comfort. This year, your Qurbani can bring them relief. A simple act of sacrifice. Visit www.familiesrelief.org.uk or call 0114 365 4454. Give your Qurbani. Share the blessing.
12: Assalamu alaikum, this is Noor and you're listening to Inspire FM. Today we will be motivating and giving tips to our upcoming exam sitters. Multiple choice or essay flow, you got the answer, let them show. Thank you for listening to these exam prep jingles. Tune in to Inspire FM to find out further information.

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
1: Last time on Akhri Mojza.
2: Hidayat sadak ke liye nahi mangi jati. Aap mujhe bata dein sadak pe kaise pahunchu. Aapka maqsad kya hai? Bas sadak nahi, sadak se kahan jayenge? Bas aap sadak pe pahuncha dein. Baki mujhe koi fikr nahi. Ye kaisi baat kar rahe ho? Kabhi bhi nahi hota ki aapki asal ghayat, aapka asal maqsad sadak ho. Aapka asal maqsad hota hai sadak kahan leke ja rahi hai. Lekin is surat mein हमें किस चीज, हमने क्या मांगा है? अगर मांगना होता, अगर हम कहें असल मकसद मेरा जन्नत है या अल्लाह से मुलाकात है, या अल्लाह मुझे वो रास्ता दिखा जो तुझ तक पहुंचा दे, या मुझे अपने तक पहुंचने का रास्ता बता दे, ये भी अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए। हिदायत किस चीज की है? हिदायत मुझे किसी तरह इस सड़क तक पहुंचा दे, बस। अजीब बात है।

इससे हमें हमें क्या सीखना है? हमें सीखना ये है कि इस्लाम में, इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में मुझे अंजाम से दिलचस्पी कम है, सफ़र से दिलचस्पी ज़्यादा है। मैं अगर दो कदम चला इस सफ़र में और मेरी मौत हो गई, कामयाब हो, अगर मैं हज़ार कदम चला और मौत आ गई, कामयाब हो, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं मैं कितना चला। बस इतना है कि मैं इस सड़क पर था और इस सड़क पर मैं चल रहा था। अब एक अगर ये बात समझ आ गई ना, तो मुझे किसी और से अपने आप को कंपेयर करने की दिलचस्पी नहीं रही। ये तो मुझसे आगे निकल गए, ये तो मुझसे पीछे हैं, इनको भी ना ना ना ना ना, हर एक का अपना पेस है, हर एक की अपनी स्पीड है। बहुत कुछ आदगी है इस रोड में भाई, आप किसी के पीछे नहीं फंसे हुए। कुछ लोग आपके साथ चल सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, वो करते हैं सपोर्ट आपको। आप एक दूसरे को जो रास्ते में जो ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं उनका आप सामना कर सकते हो। साइड पे और रोड्स हैं, उन पे बड़े प्यारे प्यारे साइंस लगे हुए, थोड़ा सा लेफ्ट टर्न ले लो, इधर भी आ जाओ थोड़ी देर, हमारे साथ भी थोड़ा टाइम गुजार लो, और आपका दोस्त आपको खींचेगा, नहीं नहीं नहीं चलते रहो चलते रहो चलते रहो, नहीं यार बहुत थक गए, एग्जिट तो ले लो यार, थोड़ा सा इस बस इस वीकेंड एग्जिट ले लें, उसके बाद तकूनू में बादी ही कौमन सालिहीन, उसके बाद अच्छे हो जाएंगे ना, चलते रहो साथ। जो साथ होगा ना वो आपको सपोर्ट करेगा, आपको सीधा चलाता चला जाएगा। ये बहुत खूबसूरत हिदायत है इहदिना सिरात अल मुस्तकीम में, लेकिन इसमें सिर्फ बस एक चीज़ रह गई, और वो ये है कि अगर सिरात खुद ही से डिक्शनरी के अतबार से सीधी है तो फिर मुस्तकीम का क्या फ़ायदा? अगर इहदिना सिरात कहा होता तो सीधा रास्ता पहले ही था, और मुस्तकीम से उसके सीधे होने में इजाफा नहीं हुआ। मुस्तकीम असल में कहा जाता है अरबी में इस्तकामा से, कामा से निकला है, जो क़ियाम से मुतालिफ है। क़ियाम किस चीज़ को कहते हैं? खड़े होने को। मुस्तकीम है जो वजीनु बिलकिस्तासिल मुस्तकीम, जो स्केल होता है ना, मीज़ान जिससे सौदा वगैरह वे किया जाता है, उसको खड़ा किया जाता है ना, सीधा खड़ा करना। मुस्तकीम है जो रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, मुस्तकीम ऊपर की तरफ होता है। तो ये सड़क सीधी भी है, कुशादा भी है, और जितना आप इस पे चलोगे आपकी ऊंचाई बढ़ रही है। ये भी एक इसमें इस्तेआरा है, इसमें एक मिसाल दी जा रही है, आप ऊंचाई की तरफ जा रहे हो। यरफ़ अल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह ताला आप में से जिनका इल्म है और जो अहले ईमान है और जिनको इल्म दिया गया, उनके दरजात को ऊंचा करता रहेगा। आपके दर्जे जितना आप इस रस्ते पर चल रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप ऊंचे हो रहे हो। आप इस मिसाल को समझो, जितना मैं ऊंचा जा रहा हूं, पीछे क्या रह गया? दुनिया और दुनिया वाले लोग जो इस रस्ते पे चलना नहीं चाहते ना, उनसे मेरी दूरी होती चली जा रही है, क्योंकि मैं इस रस्ते पे चल रहा हूं और वो लोग अभी ज़मीन पर हैं, और मैं एक तरह से मेरा उनसे फासला बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब आप इस रास्ते पे चलते हो ना, तो आपकी कंपनी में थोड़ा फ़र्क आना शुरू हो जाता है। आपकी सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जब भी आप मिलते हो, आपने बात करनी होती है फैशन के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, मूवीज़ के ऊपर, म्यूज़िक के ऊपर, कुछ 7-8 टॉपिक्स हैं उसी के अंदर, या दोस्तों के बारे में, या फलाने के इंस्टाग्राम के बारे में, या फलाने के टिकटॉक के बारे में, या किसी की गीबत, या किसकी शादी, और किसकी मंगनी, और किसका कितनी अब रस्में कितनी है, 15-16 है रस्में, नहीं अब नंबर इज इंक्रीजिंग, मायू एंड पायू एंड शायू एंड टायू, आई डोंट नो, यही बातें होनी है बस। वापस रास्ते पे चलना शुरू करते हो, वो बातें तो हैं, क्योंकि उसमें दिलचस्पी कम हो जाती है आपकी, आपको एक फासला महसूस होता है कि इस कंपनी में कुछ दिल नहीं लग रहा, कोई या इसमें कुछ मुझे लग रहा है कि ये बातें मुझे इस रास्ते से खींच रही हैं, मुझे दोबारा नीचे लेके आ रही हैं। वलाकिन्नहु अखलदा इलल अर्दी, लेकिन वो ज़मीन की तरफ रह गया, ज़मीन की तरफ रह गया। वलौ शिअना लरफअनाहु बिहा, अगर हम चाहते तो हम उस इल्म की बुनियाद पर उसको ऊंचा कर देते। कुरान क्या चाह रहा है, हम क्या चाह रहे हैं अल्लाह ताला से? या अल्लाह ताला हमें ऐसी हिदायत दे जिस पे हम चलें तो हम क्या होते चले जाएं? ऊंचे। अच्छा, ऊंचाई का एक और फ़ायदा है, जितना इंसान ऊंचा जाता है उसके व्यू में क्या फ़र्क पड़ता है? ओहो, उसको बहुत आगे की नज़र आती है, उसको बहुत पीछे की नज़र आती है, उसको वो चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं जो औरों को नज़र नहीं आ रही, उसको नज़र आना शुरू हो जाता है, वो उसका जो मंज़र है ना, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू, वो ऐसा हो जाता है कि जो बाकी ऊपर नहीं पहुँचे हुए ना,
वो उसको समझ नहीं पा रहे। वो कहते हैं मुझे ये नजर आ रहा है, कहते क्या पागल वाली बात कर रहे हो, यहाँ तो दरख्त है। नहीं, इस दरख्त के पीछे एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के पीछे एक दरिया है, उस दरिया के पीछे पहाड़ है। क्या है यार, ये रेस्टोरेंट है बस, आपको वो बाकी आगे की चीज नजर ही नहीं आ रही, और फिर पीछे की चीज आपको नजर नहीं आ रही। जो इसका जिसका व्यू ऊंचा ना हो, उसको सिर्फ जो इमीडिएटली उसके सामने है, फौरी तौर पे उसके सामने है, उसको वो नजर आएगा। जो फौरी तौर पे कल उसके पीछे है, वो उसको नजर आएगा। जो कुरान के जरिए से ऊंचा होता चला जाता है ना, उसको बहुत आगे क़यामत का दिन भी नजर आना शुरू हो जाता है, और बहुत पीछे आदम अलैहिस्सलाम नजर आने शुरू हो जाते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नजर आने शुरू हो जाते हैं, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आनी शुरू हो जाती है। मंजर बदल जाता है ना आपका, और फिर आपको पूरा एहसास होता है मैं हूं कहाँ पे। मैं आपको हाइकिंग की मिसाल देता हूँ। हाइकिंग में अगर कोई कोई किसी जंगल में पहाड़ में कहीं गुम जाए ना, तो क्या हिदायत दी जाती है, पता है क्या इंस्ट्रक्शन होती है? आप हाई एलिवेशन पे जाओ, क्योंकि अगर आप हाई एलिवेशन पे जाओगे तो आपको व्यू मिलेगा, फिर आपको अंदाजा होगा आप कहाँ खड़े हो। जो जितना इस रास्ते पे चढ़ेगा, उतना उसको वाकई में अंदाजा होगा वो खड़ा कहाँ पर है, मैं हूं किस मोड़ पर अपनी जिंदगी में। एक दिन सिरात अल मुस्तकीम, ऐसे जैसे हम अल्लाह ताला से कह रहे हो कि या अल्लाह मुझे ये भी नहीं पता मैं अपनी ज़िंदगी में कहाँ खड़ा हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम, आप बता दें, आप इस रास्ते से बता दें, आप मेरे व्यू को, मेरी नज़र को बदल दें, मेरी बसीरत को बदल दें। असल में यही, जहाँ तक मैं जितना मैं कुरान के बारे में सोचता हूँ, मैं कुछ नतायज हैं जो दिल में खुब जाते हैं, और उसमें से एक बहुत बड़ा नतीजा मेरे अपने लिए पर्सनली ज़ाती तौर पर वो ये है कि कुरान के बुनियादी मकासद में से है कि जिस लेंस से मैं दुनिया को देखता हूँ ना, वो बदल जाती है। अपने आप को देखता हूँ, अपने ताल्लुकात को देखता हूँ, दुनिया को देखता हूँ, दूसरों को देखता हूँ, उस पर असर पड़ जाता है। जिस तरह आप अगर ऐनक सनग्लासेस पहनते हो, उसका लाल रंग का शेड हो तो सारी चीज़ें लाल नज़र आती हैं, ब्लू हो तो सारी ब्लू नज़र आती हैं, कुरान हो तो सारी चीज़ें कुरान के लेंस से नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, आपका एक व्यू बदल जाता है। और यही एक बुनियादी मकसद है कुरान का कि अगर वो नज़र आना शुरू हो जाए तो सीधा रास्ता नज़र आना शुरू हो जाता है, और जो गलत रास्ते हैं वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं दूर से ही। इहदिनस सिरात अल मुस्तकीम। आई थिंक यू गाइस विल रियली एंजॉय दिस सेशन। ये सेशन स्पेशल। किसी को याद है इतनाब क्या होता है? मैंने कहा था इतनाब कोई चीज़ होती है, एक ही लफ्ज़ दो दफ़ा कहना, जबकि दो दफ़ा कहने की ज़रूरत बज़ाहिर ना थी, अगर आप ना कहते तो फिर भी बात वाज़े हो जाती, राइट? तो उसका एक ख़ास मकसद होता है। जिस तरह हमने पहले कहा था, कुरान में एक भी लफ्ज़ एक्स्ट्रा नहीं है, कोई ज़्यादती नहीं है, कोई कमी नहीं है। सिरात का लफ्ज़ भी दो दफ़ा आया, अस्सिरात अल-मुस्तकीम, और फिर दोबारा क्या, सिरात अल-लज़ीना अन'अमता अलैहिम। ये भी कहा जा सकता था अस्सिरात अल-मुस्तकीम अल-लज़ी, और इसी के साथ जोड़ के सिरात अल-मुस्तकीम अल-लज़ीना अन'अमता अलैहिम, और मुख्तलिफ उसके असालीब मुमकिन थे। लेकिन दोबारा ज़िक्र करने का मकसद ये है कि इस सड़क के बारे में अल्लाह ताला ने हमें इस राह के बारे में दो चीज़ें समझने की हिदायत दी है। एक, कि हमें दूसरों के लिए इसमें जगह बनानी है, इसमें कुशादगी है। दूसरा, इस सड़क पर चलने के लिए अगर हमें कामयाब रहना है तो हमें अपने से पीछे देखना पड़ेगा। अल्लज़ीना अन'अमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने पहले से ही नेमत की। नेमत को भी समझ लें, उर्दू में हम नेमत तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नेमा अरबी में नुमा से निकलता है। नुमा कहते हैं नरमी को, आसानी को, आराम को। जानवर जो आराम से चलते हैं ना, जैसे बिल्ली तेज़ चलती है, कुत्ता तेज़ चलता है, लेकिन गाय भैंस आराम आराम से चलते हैं, तो उन्हें अनआम कहा जाता है, क्योंकि वो आराम आराम से चलते हैं। नईम अरबी में कहते हैं कोई चीज़ जो हो वो बहुत नरम हो। इनआम से मुराद है अल्लाह ताला ने जिसके लिए आसानियाँ पैदा की, जिसके लिए चीज़ जो है वो सहूलत वाली बनाई। सिरात अल-लज़ीना अन'अमता अलैहिम में इस बात की तरफ इशारा है कि अगर सफ़र बहुत लंबा है और सीधा है तो इसका मतलब है और ऊपर की तरफ जा रहा है। और बाय द वे, जितना सफ़र ऊपर की तरफ जाता है, जितनी रोड में एलिवेशन होती है, उतना मुश्किल होता है और थकाने वाला होता है। तो जितना इंसान थकेगा उतना इम्कान है कि वो फिर आधे रास्ते में छोड़ देगा या पीछे की तरफ गिर जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कहा, या हमने पूछा अल्लाह से, या अल्लाह
कुछ लोगों के लिए आपने ये मुश्किल रास्ता भी आसान बना दिया। इस मुश्किल रास्ते में भी आपने आसानियां पैदा कर दी, सहूलतें पैदा कर दी। वो कौन लोग हैं उनके बारे में हमें बता दें। सिरात अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम, इसकी एक आसान मिसाल भी समझ लें। अगर आप यूनिवर्सिटी में हो और आप कोई डिग्री कर रहे हो और आपको नसीहत चाहिए कि मैं करियर में क्या करूं, आप किससे पूछोगे? क्या आप उससे पूछोगे जो फर्स्ट ईयर में है आपकी तरह, या आप उससे पूछोगे जो ग्रेजुएट हो चुका है और अब इंडस्ट्री के अंदर है? किससे पूछोगे? ग्रेजुएट से पूछोगे ना, जो आपके साथ है वो आपकी तरह, वो भी गुमा हुआ है, आप भी कंफ्यूज, वो आपको एडवाइस तो बड़ी देगा लेकिन उसकी एडवाइस का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसके पास कोई तजुर्बा नहीं है, वो इस रास्ते से गुजर नहीं चुका। अल्लाह ताला ने यहाँ ये नहीं कहा उन लोगों का रास्ता जिनको आप, जिन पर आप इनाम करते हैं, नहीं, उन लोगों का रास्ता जिन पर आप इनाम कर चुके। माजी इसलिए कि हाल में जो लोग अल्लाह ताला आज उन पर इनाम कर भी रहा हो, उनके कल की कोई जमानत नहीं है। हो सकता है वो थोड़ी सी प्रोग्रेस कर लें, लेकिन हो सकता है बाद में वो रास्ते से गिर जाए। हर इंसान गिर सकता है, किसी को कोई गारंटी नहीं है। और ये भी हमारे दिन का बहुत बड़ा हिस्सा है, हम किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये हिदायत याफ्ता है, इसको फॉलो करोगे तो जन्नत मिलेगी। हयात में से जो भी हयात है ना, उससे मैं आपसे फ़ायदा उठा सकता हूँ, आप मुझसे फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन मैं आपके बारे में कह सकता हूँ ना आप मेरे बारे में कह सकते हैं कि हिदायत तो इस शख्स के पास है। इस पे अल्लाह ने बड़ा इनाम किया, इसको फॉलो करोगे तो बस जिंदगी संवर जाएगी। क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सब एक रास्ते पे चल रहे हैं, हम में से कोई भी किसी वक्त भी गिर सकता है, बल्कि गिरे ना भी जानबूझ के या बगैर, यानी जानबूझ के गलती से भी गलती कर सकता है इंसान। उसके फहम में गलती हो सकती है, उसके अमल में गलती हो सकती है, उसकी समझ में गलती हो सकती है, मुमकिन है कि नहीं? तो अगर हमें कोई ऐसा रोल मॉडल चाहिए जो गारंटी हो कि इसको फॉलो करना है तुम गलती नहीं होगी, तो वो ऐसे ही लोग हो सकते हैं जो पूरे रास्ते से गुजर के अंजाम तक पहुंच चुके, फिनिश लाइन तक पहुंच चुके। उसके अलावा किसी से मैं सपोर्ट तो ले सकता हूं, लेकिन उस पर मैं 100% डिपेंड नहीं कर सकता। भाई भी बड़ी प्यारी बात है, क्योंकि इस बाकी मजाहब में क्या हुआ पता है? हिंदुइज्म में पंडित है, कैथोलिसिज्म में पोप है, और ये जो शख्सियतें हस्तियां होती हैं क्या करते हैं लोग उन पर 100% डिपेंड करते हैं। ये मुझे आखिरी रोड तक ले जाएगा, ये मुझे मेरी जिंदगी ये संवार देगा, मेरे गुनाह ये माफ़ करवा देगा, मेरी ख्वाहिशें ये पूरी करवा देगा। यानी जो हयात हैं उससे हम सीखें, लेकिन एक हद तक। अब देखिए, सहाबा में से 10 हैं जिनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि 10 को जन्नत की जमानत दी गई, गारंटी कर दिया जन्नत मिलेगी 10 को। उनमें से एक उमर बिन खत्ताब हैं कि नहीं हैं? उमर बिन खत्ताब खुतबा दे रहे हैं और उनके कपड़े देख के एक औरत से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा यह आपने बैतुल माल से अपने हक से ज़्यादा लिया है। उनका खुतबा इंटरप्ट कर दिया उसने, उनकी पकड़ की, उनको एक्सप्लेन करना पड़ा, नहीं नहीं ये ऐसी बात नहीं है, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया। ऐसा क्यों हुआ? अगर बाकी वो जन्नत का उनको वादा कर दिया गया है और मैं उस क्राउड में बैठा होता तो मेरे जहन में तो कभी सवाल ना आता, अगर सवाल आता भी तो मैं कहता नहीं वो तो जन्नती हैं, उनकी तो 100% पैरवी करनी है। लेकिन आप सहाबा की मिसाल देखें तो क्या देखते हैं? वो एक दूसरे से सवाल पूछते हैं कि नहीं, एक दूसरे की करेक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों करते हैं? वो ये नहीं कहते ये तो बहुत पहुंचे हुए हैं, इनके बारे में पता है नबी ने क्या कहा है, इनको तो जन्नत मिलनी है, इनको नहीं, इनसे पूछोगे तुम? सिरात अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम में जिन लोगों की मिसाल बिल्कुल परफेक्ट है ना, जिसमें कोई खलल नहीं है, और जो पहुंच गए, ग्रेजुएट हो गए इस रस्ते से, वो लोग सब माजी में हैं, वो सब माजी में, उनकी मिसाल हमने लेनी है, और उनमें और बाकियों में एक फ़र्क होना चाहिए। होता यह क्योंकि हमने असरात लिए हैं और मजाहिब से, मुसलमानों ने सदियों में हमने और मजाहिब से असरात लिए, और उसमें से एक असर हमने ये भी लिया कि हमने ये अकीदत मंदी शुरू कर दी कि हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह ताला के ऐसे पहुँचे हुए बंदे हैं, ऐसे औलिया हैं अल्लाह ताला के, कि बस अगर उनके साथ मेरी सोबत हो जाए ना तो बस जन्नत ही जन्नत है। और यानी उनका एक ख़ास मकाम है, वो उस मकाम पर, वो हिदायत के उस रास्ते पर उनकी गारंटी हो चुकी है,
अब ये गारंटीड शख्स हमारे मोहल्ले में रहता है, तो मैंने अगर इनका हाथ पकड़ के मैं ज़रा चूम लूँ और फिर इनके इनके दस्ते मुबारक से मैं पानी पी लूँ, या तो फिर मेरी भी मग़फ़िरत हो जाएगी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नहीं होता, ये और जगहों की बात कर रहा हूँ मैं। ये हज़ारों साल पुरानी गुमराही है, हमारे यहाँ नहीं होती, हम मुसलमान हैं माशाल्लाह। यही चीज़ इस्लाम तबाह बर्बाद करने आया था। हमने, अब लोग मेरे बारे में भी करते हैं, यार मेरे मेरे बच्चे के सर पे हाथ फेर दें, इसके लिए दुआ कर दें, इसके लिए कर दें, आप बस एक ये लफ्ज़ लिख दें मेरे लिए, मेरी मेरे लफ्ज़ से क्या हो जाए। जैसे आप अल्लाह के बंदे हो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, जैसे आपकी कोई गारंटी नहीं, मेरी कोई गारंटी नहीं, ये माइक मेरे ऊपर लगा हुआ है, इससे मेरी कोई मेरा कोई रुतबा नहीं बढ़ जाता। अल्लाह को मालूम है किसका मकाम ऊंचा है, किसका मकाम नीचे है, ये तो मेरे रब को मालूम है, मुझे इसका कोई इल्म नहीं, आपको इसका कोई इल्म नहीं। हमारा रवैया क्या होना चाहिए? फिर ये रवैया मैंने जब देखा ना, मेरे कुछ दोस्त थे जो हम, मैं जब इस्लाम सीख रहा था और मैं मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसेस से गुजर रहा था, तो मेरे कुछ दोस्त थे उनके कुछ और इन्फ्लुएंसेस थे, तो एक साहब से वो सीख रहे थे, उनके वो बहुत ज़्यादा यानी पैरोकारी में वो लगे हुए थे। तो एक दफ़ा वो एक कॉन्फ्रेंस में आए, वो साहब बहुत पहुँचे हुए अल्लाह ताला के उलिया में से, तो वो चल रहे थे, उनके पीछे पीछे उनके तालिब इल्म ऐसे ऐसे चल रहे थे आधे रुकू में। मैं कहा ये कौन सा इस्लाम है, ये इस्लाम तो मैंने कुरान में नहीं सीखा, ये तो मुझे सीरत में नज़र नहीं आ रहा। सीरत में तो मुझे ये मिल रहा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे हैं सहाबा के साथ, और कोई गैर अंदर आता है, कोई अजनबी अंदर आता है, और वो अबू बकर से बात करनी शुरू कर देता है, या रसूल अल्लाह, तो अबू बकर कहते हैं नहीं नहीं नहीं वो है, यानी उनको पता नहीं चलता था कि रसूल कौन से हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर बिन खत्ताब जिनको जन्नत की जमानत दी गई है, दरख्त के नीचे गदा बांध के सो रहे हैं, कोई रैंक नहीं है, कोई ख़ास कपड़ा नहीं है, कोई ख़ास लिबास नहीं कि वो एक दफ़ा वो आ गए तो फिर नूर आ गया। एक नौजवान मुझे कल मिला था रेस्टोरेंट में, कहता आपकी शक्ल पे बहुत नूर है, मैंने कहा नहीं ये क्रीम लगाई है मैंने कोई नूर नहीं है ये जो हमने बनाया हुआ है ना, कि कुछ लोग हैं जिन पे अल्लाह का बड़ा ख़ास इनाम है, बहुत ओ हो ये ओ हो ना, ये सिरात लदीन अनअमता अलैहिम इसका तोड़ है। जिन शख्सियात से हमें इम्प्रेस होना है ना, वो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, अस्हाबुल कहफ, ये वो लोग हैं जिनके बारे, ये हैं अल्लज़ीन अनअमता अलैहिम, इनके बारे में सीखो, इनसे इंस्पिरेशन लो। मैं ये नहीं कहता कि हमें अपने बड़ों की और अपने बुज़ुर्गों की और अपने उलमा की इज़्ज़त नहीं करनी चाहिए, मैं कहता हूँ बिल्कुल इज़्ज़त करनी चाहिए, उन्हें पोप नहीं बना देना चाहिए, वो एक और मज़हब है, वो इस्लाम नहीं है, वो एक और दीन है। और जब मुझे ये बात समझ आई, मेरे कुछ हलकात में, मैं जब यंगर नौजवान था तो कुछ हलकात में कोई बड़े बड़े आलिम आते थे न्यूयॉर्क में ना, मुख्तलिफ जगहों से, तो लोग उनसे बड़े मुअत्तबाना अंदाज में, शेख साहब एक सवाल है, एक सवाल अर्ज़ कर दूँ, बस एक सवाल अर्ज़ कर दूँ, ये क्या हो रहा है? वो सवाल, उसका वो जवाब देते तो मेरे जहन में एक फॉलो अप क्वेश्चन आता, मुझे उनका जवाब समझ नहीं आया, उनका जवाब मेरे नज़दीक कामिल नहीं था या कन्विंसिंग नहीं था, तो मैं आगे से सवाल पूछ लूँ, आपने ये बात की लेकिन आयत पे तो कुछ और बात हो रही है, तो आप इसको कैसे रिकनसाइल करते हैं? इतनी सी बात। और जो उनके सारे फैन बैठे हुए थे ना, वो क्या करते हैं पता है? पता नहीं है कौन है। जैसे एक दफ़ा हज़रत ने जवाब दे दिया तो किसी की क्या मजाल आगे से पूछने की। मैं तो समझा था मैं एक ऐसे ऐसे दीन को फॉलो कर रहा हूँ जिस दीन में फरिश्ते, जब फरिश्तों को कोई बात समझ नहीं आई कि आदम को क्यों बनाया, वो तो खून बहाएगा, उन्होंने बेटोक पूछ लिया अल्लाह ताला से, आप क्या ज़मीन में ऐसी मखलूक डालेंगे जो फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा? पूछा भी किससे? अल्लाह से। और अल्लाह ने नहीं कहा तुम किससे पूछ रहे हो, तुम्हारी ये मजाल? ऐसा कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि जिन लोगों का रास्ता बगैर पूछे, बगैर क्रिटिसाइज किए फॉलो करना है और आंखें बंद करके फॉलो करना है, वो कहाँ है? वो माजी में है, वो माजी में साथ लदीना अलहम थाने, वो पीछे हैं, वो अभी नहीं है। अभी हम एक दूसरे से सीख सकते हैं,
लेकिन हम में से कोई रास्ते की इंतहा तक नहीं पहुंचा, तो हम एक दूसरे से, हमें आपके फायदे के लिए, आप मेरे फायदे के लिए। और ये जब मैंने, मेरे अंदर ये रवैया आ गया ना, इसको कुछ लोग बदतमीजी कहते हैं, मेरे नज़दीक ये इल्म, इल्म का रास्ता है, इल्म का सफ़र है और हिदायत का सफ़र। अल्लाह ताला ने मेरी पॉपुलैरिटी की वजह से मेरे लिए बड़े अजीब अजीब दरवाज़े खोले और दुनिया के बहुत सारे उलमा जो हैं उनसे मेरी एक्सेस हुई, उनसे बात करने का मौका हुआ। तो मैं बात करने से पहले ही मैं कह देता हूँ, सर मैं ये रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा ना, ये वीडियो पे डालना चाह रहा हूँ, मैं अपनी अपने फहम के लिए मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, तो जो जहन में सवाल आएगा मैं पूछूंगा, बदतमीज़ी लगेगी शायद आपको, लेकिन मैं फिर भी करूँगा सवाल, तुमने कहा यही पसंद है मुझे। और फिर मैं करता हूँ वो बात, कहते हैं फिर मैं कहता हूँ आपकी दिल में कोई तो क्यों नहीं बनती, इसलिए नहीं बनती, फिर हम डिबेट करते हैं, फिर उनको मेरी बात अच्छी लगती है, कोई बात मेरी बुरी लगती है, लेकिन हम डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करोगे ना तो आपकी, आपके जहन में, आपकी सोच में, आपके फहम में इजाफा होगा। अगर आप यानी लिहाज रखते हुए सवाल ही ना पूछो, जहन में सवाल रहे, बेअदबी होती है, तो आपकी असल वफादारी इल्म से नहीं है, हिदायत से नहीं है, आपकी असल वफादारी लिहाज से है किसी के। मुझे हिदायत के रास्ते में मुझे किसी और चीज़ का लिहाज नहीं है, मुझे बस हक का लिहाज है, बस मुझे हक चाहिए। और मैं वो